फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:57 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजे हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आपके लिए बबीता शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद

0: रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: गालिब का एक मशहूर शेर है, जन्नत की हकीकत हमें मालूम है लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लगभग सभी जगह सभी धर्म ग्रंथों में जन्नत यानी स्वर्ग और जहन्नुम यानी नर्क की कल्पना की गई है। ऐसा इसलिए किया गया प्रतीत होता है कि लोग सावधान रहें अपने कर्मों के प्रति। मान्यता है अच्छा कार्य करने पर स्वर्ग और बुरे कर्म करने पर नर्क मिलता है। पुण्यात्मा स्वर्ग में और पापात्मा नर्क में निवास करते हैं। स्वर्ग में सुख मिलता है, नर्क में दुख। वस्तुतः ये एक सांकेतिक अभिप्राय है। दरअसल जहां सुमति सौहार्द शांति और सद्भावना हो वहां स्वर्ग है, जहां तकरार अशांति नफरत और तनाव हो वहां नर्क है। स्वर्ग और नर्क मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी दिखाई देता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य एक समाज में रहकर ही उसे सुख सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए समाज के लिए सोचना चाहिए। मानस में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सुखी रहने के लिए मानसिक शांति अति आवश्यक है। कई लोगों को शांति से रहना जरा भी नहीं सुहाता है, हमेशा परेशानियां ओढ़े रहने की आदत पड़ जाती है। न वे स्वयं खुश रहना जानते हैं, न अपने आसपास किसी को खुश रहने देते हैं। मन की अशांति ही चिंताओं को जन्म देती है। शांत स्थिर मन चिंता से निपटना जानता है, जबकि अशांत और अस्थिर मन उसे और बढ़ाता है। क्रोध चिंता तनाव और चिड़चिड़ापन ऊर्जा का नाश करते हैं। कई लोग अपने कार्यस्थल की तमाम परेशानियां घर ले आते हैं। इससे खुद तो दुख पाते हैं, अपने परिवार को भी दुखी कर देते हैं। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। आशावादी सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं से जूझकर उसके हल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अशांत मन वाला व्यक्ति उस हल को अनदेखा किए रहता है। जहां जीवन में अगले पल का कोई भरोसा नहीं, वहां चिंता करके वर्तमान को भी खो देना कहां की समझदारी है। शांति के लिए परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना जरूरी है। पंचतंत्र में कहा गया है, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुषों का व्यवहार एक सा रहता है। सूर्य उदय के समय भी रक्त वर्ण का होता है और अस्त के समय भी। सुखी रहने का यही मूल मंत्र है। सिकंदर ने किसी कारण से रुष्ट होकर अपनी सेना के एक सेनापति को पदच्युत करके सूबेदार बना दिया। समय बीतने पर उस सूबेदार को सिकंदर के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। सिकंदर ने पूछा, मैं तुमको पहले के समान प्रसन्न देखता हूँ, क्या बात है, तुम्हें अपनी पदावनति का अफसोस नहीं है? सूबेदार ने कहा, श्रीमान मैं तो पहले की अपेक्षा भी अधिक सुखी हूँ। पहले तो सेना के अधिकारी और सैनिक मुझसे डरते थे, मिलने में संकोच करते थे, लेकिन अब वे मुझसे स्नेह करते हैं, मेरा भरपूर सम्मान करते हैं, प्रत्येक बात में मुझसे सम्मति लेते हैं। उनकी सेवा करने का अवसर तो मुझे अब मिला है। सिकंदर ने फिर पूछा, क्या पद से हटने में तुम्हें अपमान प्रतीत नहीं होता? सूबेदार ने जवाब दिया, महाराज सम्मान पद में है या मानवता में। पद प्राप्त कर कोई प्रमाद

0: दूसरों को सताए, भ्रष्टाचार करे और करों में चूर रहे तो वो निंदा के योग्य है। सम्मान तो है दूसरों की सेवा करने में और ईमानदारी के साथ संतुष्ट रहने में, भले ही वो व्यक्ति सैनिक हो या उससे भी छोटा गांव का चौकीदार। सिकंदर उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो गया, बोला, मेरी भूल पर ध्यान मत देना, तुम आज से फिर सेनापति बनाए गए। शांति प्राप्त करने के संदर्भ में गीता का स्पष्ट कथन है, जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित रहता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें सदैव शांति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रहने में मदद कर सकें।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार हैं मुकेश। कार्यक्रम में पहले लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के गाए हुए इस भक्ति गीत को। रचना है मधुकर राजस्थानी की।

दास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आइए अब हम आपको सुनवा रहे मुकेश के स्वर में भरत व्यास की इस रचना को। संगीत है लक्ष्मीकांत पैरेलाल का।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के गाए हुए इस भक्ति गीत को। रचना है कैफी आजमी का, संगीत खयाम का।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से।

किसान भाई मन, राम राम, जय जुहार। आज हमन चर्चा करबो कि बकरी पालन हमर क्षेत्र बर बहुत बढ़िया लाभ के आगम बनत हे, लाभ के साधन बनत हे, और एकर सेती गरीब के गाय भी बकरी ला कहा जाथे। बकरी के पालन गोरस बर, मांस बर अलग अलग तौर तरीका से किए जाते। और बकरी पालन के बात करथन तो हमर क्षेत्र विशेष मा बहुत सुघर सुघर नस्ल के बकरी मन की विकास भी होते। चाहे मन जमुना पारी के बात करन, या ब्लैक बंगाल के बात करन, या बर्बरी के बात करन, अलग अलग नस्ल के बकरी के भी विकास हमर क्षेत्र विशेष मा देखे और मिलत हे। तो बकरी मन में जो संक्रामक रोग होते उकर बचाव के बारे में आज हमन जानबो कि बकरी हर अगर स्वस्थ दिखा थे तो ये तो बढ़िया बात है, लेकिन संख्यो अस्वस्थ कब होते? जब ओला हमन एक ही ठाउर में बांधे रहन और साफ सुथरा नहीं रहे। बकरी पालन में हमला साफ सफाई स्वच्छता ला विशेष ध्यान रखना चाहिए। बांध के जोन ठाउर में राखथन, जोन कमरा में राखथन, साफ सुथरा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। बकरी जोन रहते संगवारी हो ओला पिए बर साफ सुथरा पानी चाहिए। बकरी मन का होते, ये मन परछर जात कहते हैं। परछर जात यानी मन साफ सफाई पसंद ला करते हैं। तो एकर बर साफ सुथरा पानी और पौष्टिक आहार पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। अगर संक्रामक बीमारी के बचाव की बात करते हैं तो पशु गृह के मुख्य जो द्वार होते ओमा हमला एक सीमेंट के टैंक बना करके ओमा कीटाणुनाशक घोल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल हमला भर के रखना चाहिए। एकर अनुपात 1:1000 होना चाहिए। और जो बीमार बकरी हावे, पशु हावे, ओला स्वस्थ पशु ले अलग रखना होइस। रोग ले मरे बकरी जो रहते ओला खुला मा मैदान मा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो संगी हो ओहर का होते एक दूसर मा फैलते। एकर शव ला जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। अधिकतर जहाँ तालाब के किनारे है, नरवा नदी है किनारे है, वहाँ फेंक दिए जाते। तो एकर से ओकर विषाणु मन, बैक्टीरिया मन पुनः सक्रिय हो जाते हैं। और आप मन ला बता देवन कि ऐसे चारागाह क्षेत्र में झन चराए वाले जावा जोन क्षेत्र हर दूषित रही थे। पशु गृह ला बढ़िया से आप मन ला साफ सुथरा रखना है। एकर बार आप मन 2% कास्टिक सोडा या 5% कार्बेलिक अम्ल के घोल छिड़काव करके भी आप मन ओमन के कोठा ला बढ़िया क्लीन कर सकत हो। रोग के अगर आशंका लागत है आप मन ला तो लखठा के समीप के पशु चिकित्सक पशुपालन विभाग में सूचना देवा। पशुपालक अगर आप मन बकरी पालन में लाभ लेना चाहता था तो टीकाकरण के जो कैलेंडर होते ओला आप मनला आत्मसात करना पड़ी। टीकाकरण समय पूर्व कराना पड़ी। पशु गृह में का होते कीड़ा मकोड़ा भी आ जाते बीज बाच में, तो एकर नियंत्रण पर भी आप मन नीम तेल के उपयोग कर सकता हो। वर्षा के पहली या निश्चित समय में आप मन पशु ला बकरी ला कृमि नाशक दवा पिलावा, नहीं तो का होते पतला दस्त करे लागते। अगर हमन बात करथन टीकाकरण के तो बकरी मन मा खुरपका मुंहपका जोन ला FMD कथन एक माह की उम्र मा और दूसर डोज जो है एक माह के बाद लगते और 6 माह मा यह रिपीट होते। तो आप मन FMD के टीकाकरण करवावा। गलघोटू है 6 महीना में पहली डोज लगते और हर साल 1 पैंत लगते। एक टंगिया है जिनला ब्लैक क्वार्टर कहा जाते, 6 महीना में पहली डोज लगना है और 1 साल में 1 बार। एकर अलावा क्षण रोग एंथ्रेक्स 6 महीना में 1 पैंत। संक्रामक अगर गर्भपात होते, ब्रुसेलोसिस के समस्या है तो 4-8 महीना की उम्र में बछिया मन में जीवन में 1 बार लगते अगर टीका हार। और PPR बकरी के जो प्लेग है, महामारी हावे, एकर टीकाकरण पहली डोज 3 महीना में और हरेक बच्चर 1 पैंत। एकर अलावा एंट्रोटॉक्सिमिया के टीका लगते, पहली टीका 3 माह में और दूसरा टीका जो है साल में 1 पैंत लगते।

0: बकरी के चेचक, एकर टीका भी 3 महीना में पहली डोज और साल में एक पैद। ऐसने तरीका से बकरी पालन में भी टीकाकरण के महत्व होते, तो आप मन बकरी मन टीकाकरण करावा, स्वस्थ और मस्त रख करके दूध और मांस ले आमदनी में वृद्धि करो।
1: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस। देश का अनका वक्त होगा 6:50। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। आंखों की रोशनी बचाएं, ग्लूकोमा की जांच कराएं। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर 7:45 पर। 8:30 पर सुनिएगा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजरी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आपको सुनवाएंगे 9:00। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण सुनेगा रायपुर केंद्र से 9:55 पर और 11:55 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 10:10 पर। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो आधारित होता है आपके ईमेल्स और पत्रों पर आधारित। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनेंगे 11:00 से 11:55 तक और दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक। आज शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम 5:10 पर। 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा। साथ ही सुनेगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर और शाम 7:00। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। सुनेगा नसीहत, खेती की लागत घटाने में वेस्ट डिकम्पोजर की भूमिका। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण रात्रि 9:00। आज रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com। अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस। कलाकार हैं रविंद्र साठे और साथी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड 115 115।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

अभी आपने सुना रामचरितमानस, कलाकार थे रविंद्र साठिया और साथी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशकाल। समूह स्वर में आइए सुनते हैं देशकाल।

अभी आपने सुना समूह स्वर में देश गान। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: य केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फिजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधि तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000 अक्टूबर मासे कजान नगरे गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्त्री कार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्ली नगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड NCCF तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई एर्नाकुलम मदुरई गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम अपनापन।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?

0: अरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ब्लैकमेल, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए इस गीत को सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता के युगल स्वर में आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को। इसे सुरों में ढाला है शिव हरे ने। फिल्म का नाम चांदनी।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: मिलन, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर के गाए हुए इस गीत को। रचना है कुमार की, संगीत मित ब्रॉस का, फिल्म का नाम बागी।

मोनाली ठाकुर के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। साथियों, कार्यक्रम झरोखा सुनने वाले आप सभी साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आंखें हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं के माध्यम से हम इस संसार को देखते हैं, अपने प्रियजनों को पहचानते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आंखों की सुरक्षा और उनकी नियमित जांच हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शामिल हुए हैं जिसे ग्लूकोमा या आम बोलचाल की भाषा में काला मोतिया कहा जाता है। ग्लूकोमा आंख की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। यह वही तंत्रिका है जो आंखों से प्राप्त दृश्य जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ग्लूकोमा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई लोगों में इसकी शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। व्यक्ति को लगता रहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, जबकि धीरे धीरे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण केवल इस बात का इंतजार करना कि आंखों में दर्द होगा या नज़र धुंधली होगी उचित नहीं। समय पर आंखों की जांच कराना बहुत जरूरी है। नेत्र चिकित्सक आवश्यकता अनुसार आंखों के दबाव, ऑप्टिक नर्व और दृष्टि के क्षेत्र आदि की जांच कर सकते हैं। नियमित जांच से समस्या का समय पर पता लगाने में मदद मिलती है और चिकित्सक आवश्यक उपचार की

सलाह दे सकते हैं। ग्लूकोमा का पता चलने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार और नियमित फॉलोअप से बीमारी को नियंत्रित करने और बची हुई दृष्टि की सुरक्षा करने में मदद मिल सकती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं या उपचार को अपनी इच्छा से बंद भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों को भी आँख की जाँच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा रहा है तो आँखों की जाँच के बारे में नेत्र चिकित्सक से उचित सलाह लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपनी आँखों की उपेक्षा नहीं करेंगे। आँखों में किसी प्रकार का बदलाव महसूस होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेंगे और नियमित आँखों की जाँच के प्रति अपने परिवार तथा समाज को जागरूक करेंगे। याद रखिए, दृष्टि एक अनमोल उपहार है। इसे खोने का इंतजार ना करें, बल्कि समय रहते इसकी रक्षा करें। आंखों की रोशनी बचाएं, ग्लूकोमा की जांच कराएं, जागरूक बने, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को रोशन बनाएं। तो ये थी जानकारी आंखों की रोशनी बचाएं, ग्लूकोमा की जांच कराएं के विषय में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण अभी आपने सुना। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर में पहले आइए हम आपको सुनवा रहे हैं भगवती साहू के गाए हुए इस विरह गीत को।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर में लीजिए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं झुमुक लाल देवांगन और मंजू चतुर्वेदी के गाए हुए इस छत्तीसगढ़ी गीत को।

0: झुमुकलाल देवांगन और मंजू चतुर्वेदी के गाए हुए इस छत्तीसगढ़ी गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंजनी, प्रस्तुतकर्ता श्री रवि आनंद। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण 9:55 पर और 11:55 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 10:10 पर और 10:30 पर। हम आपकी सेवा में पेश करेंगे आपके ईमेल्स और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनेंगे आप 11:00 से 11:55 तक और दिन के 12:00 से शाम 5:00 तक। आज शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का वक्त होगा संध्या 5:10। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय होगा संध्या 5:30। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा जयंती पर चर्चा होगी। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 और 6:10 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। सुनेगा नसीहत खेती की लागत घटाने में वेस्ट डिकम्पोजर की भूमिका। इसके अलावा आप सुनेंगे कृषक प्रश्नमंच आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:00। आज रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: श्रोताओं आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अप

0: अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी में समाचार और मॉर्निंग न्यूज। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रेडियो समाचार प्रभाग हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
5: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना

0: आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स

लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंजनी मा आज आप अपन के संगवारी हवे कृष्ण कुमार साव। तो कृष्ण कुमार साव कति ओर ले आप मल्ला जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम में आज आप अपन के पसंद के गीत सुनवाहा तलेवा कार्यक्रम के शुरुआत करत हन। ये छत्तीसगढ़ी गीत ला जिला गाय हवे शैलजीत साहू और सावित्री कहार। और गीत सुने पर हमला ईमेल करे हावे माँ बमलेश्वरी धाम रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू नेहा देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू खपरी कुटेला भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से चेतन लाल साहू टीकेश्वरी देवी प्रतीक कुमार राहुल मोहित कुमार साहू दुर्गा प्रसाद गंगा देवी साहू रेवा राम साहू कौशल्या देवी साहू कोहका भिलाईले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। ये गीतला सुने पर हमला ईमेल करे हमें धमधा ग्राम सुखरी कलाले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल। माँ महामाया चौक मेघापारा ले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या दीपांजलि दीपक पटेल और टेकलाल पटेल। यही गीतला सुने पर हमला ईमेल करे हमें मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ ले दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति अंश और शिवांश वर्मा। तावा संगवारी आप मन सबके पसंद पसूरथन ये छत्तीसगढ़ी गीतला।

0: सगा
1: काय सगा
0: तोरे आगे होवा ते सगा जड़ी मसवन के
1: मोर मने
2: छत्तीसगढ़ी लोकगीत के फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंजनी में अगला गीत के फरमाइश करे हवे संगवारी मन है बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा सेन कौशल सेन मेचका सोंढूर नगरी ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग लिखिल नाग तरुणदीप नाग गणेश धाम परसोली पोस्ट खेड़था बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले हवे योगेश्वर साहू डोमेश्वरी साहू यामिनी मुस्कान हर्षिता साहू सालेभाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशु खेमु ध्रुव बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले शिवप्रसाद देवप्रसाद मोहित कुमार देवदास ओमीन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास यही गीत के फरमाइशा है ग्राम गोड़मर्रा पोस्ट सूर्यगांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालौद ले देवप्रसाद देवदास राम अवतार देवदास सोनू मोनू और कुमारी ललेश्वरी देवदास नामागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हावे विष्णु साहू पूरब साहू बीरा साहू हर्ष साहू कुमकुम योगेश्वरी साहू करही भद्दर ले हावे पुरुषोत्तम निर्मलकर हमेश्वर साहू यशवंत सिन्हा घनशु सिन्हा बुंदेल राम ठाकुर बिनेन्द्र कुमार सूर्यवंशी महादेव ठाकुर ज्ञानलाल साहू भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हिमकेश्वर साहू

राहुल साहू, चंपा साहू, पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ ले, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, उत्तम कुमार जंघेल, रुक्मणी जंघेल, भारती जंघेल। ये गीत के फरमाइश करे हावे श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। ता आवा संगवारी हो आप सबके पसंद पर मैं सुनत हन निका साहू और गया सिंह राज के गाए हुए ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

रिंगनी छत्तीसगढ़िया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन, नांदघाट कातल बोर्डे भांग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टीकेश्वर ऋतु राजपूत, कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, लालिमा साहू, कुशान साहू, निशान साहू, नारायणपुर ले हमें श्रीमती दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे, अड़ार नांदघाट ले माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, इच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, बीरनपुर कला दनिया गंडई ले सुरेश कुमार साहू, टेमेश्वरी खेलेश्वरी मास्टर तन्मय साहू, जंत्रीबाई साहू, बाजार पारा बेमेतरा ले हमाला चिट्ठी लिखिन हावे भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, और रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलई ले पत्र आए सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन और शुभम जैन के। त संगवारी हो आवा आप सबके पसंद के सुनथन मणिराम साहू, अखिलेश साहू के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत ला।

संगवारी हो, आपन अपन रेडियो सेट में ट्यून करे हवा आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस ए वक्त आपन सुनत हवा आपन के पसंदीदीय कार्यक्रम लोकरंजनी। लोकरंजनी कार्यक्रम के अगला गीत सुने के फरमाइश लिख भेजे हैं ईमेल के जरिया। चरडोगरी पिपरिया जिला कपीरधाम छत्तीसगढ़ ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, नरगोड़।

छत्तीसगढ़ ले हावे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, मोतीमबाई मानिकपुरी, धनवंतीनबाई, योगिताबाई मानिकपुरी, ये मन हावे ग्राम गणेश धाम परसूली खिरथा बाजार ले इंदिरा नगर रायगढ़ ले हमला चिट्ठी लिखब संगवारी हमे शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, देवरी भाटा पारा ले हावे गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी शर्मा, गणेश मिस्त्री, छत्तीसगढ़ बेमेतरा ले श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी, सुषमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ ले चिट्ठी लिखोया संगवारी हावे नारायण दास वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, ग्राम बंगला मटिया बालोद ले हावे चिट्ठी लिखोया संगवारी शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद से नमित कुमार, गौतम, पीहू, नीतू और मुरली गौतम और संगवारी हवे ये सब मन आप मन गीत के फरमाइश करे हवा भूपेंद्र जायसवाल और गीता साहू के स्वर मा ये छत्तीसगढ़ी गीत ला तावा संगवारी हो सुनन आप मन के पसंद गीत।

संगवारी हो कार्यक्रम लोकरंजनी के अंतिम गीत के फरमाइश आया हवे झूलेलाल।

कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ ले लक्ष्मण बाधवानी, बिमला बाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी, महादेवघाट अमलेश्वर ले हमला पत्र लिखोया संगवारी हमें डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। अंतिम गीत के फरमाइश आए है छत्तीसगढ़ी भाटापारा दतरंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झावेन्द्र कुमार वर्मा। गौशाला पारा रायगढ़ ले हवे विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यीशु व अंशु गुप्ता। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। मोहन पारा अकलतरा ले अभिनव साहू, अभिषेक साहू, उमा देवी साहू। ग्राम पंचायत बठेना बलकरण वर्मा लिखिन हवे चिट्ठी के माध्यम से, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा यहीं ले। चटौदा सारा गांव ले हमला चिट्ठी लिखवा संगवारी हमें सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी कृति वर्मा। यही गीत के फरमाइश लिख भेजे है हिच्छा महासमुंद ले अटल दास वैष्णव, माना दास, ऋचा गायत्री, भीषम दास पारिकपुरी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगे ले हमला चिट्ठी लिखवा संगवारी हमें द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेन्द्र कुमार वर्मा। ग्राम खट्टी जिला महासमुंद ले सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा, ओंकार शर्मा, प्रेमलता उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय। धरसीवा छत्तीसगढ़ ले हावे छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हावे छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, अरसीएल यादव। अंतिम गीत के फरमाइश लिख भेजे हावे लक्ष्मण बाधवानी, बिमला बाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी, झूलेलाल कानूनी रायगढ़ ले। तो संगवारी हो आवा आप सबके पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ला।

ऐसे संगवारी जिला आपन के पसंद के गीत सुना हवे और जिला ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लागथे, वो संगवारी मन हमला चिट्ठी लिखें या हमला जो है ईमेल करें। हम हमार चिट्ठी के डहर हावे संगवारी हो, कार्यक्रम लोकरंजनी द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन कोड हावे 496001। कार्यक्रम लोकरंजनी बर ईमेल हावे srotarayagad@gmail.com में आप मन अपन पसंद के गीत के फरमाइश कर सका था। तब कार्यक्रम ले देवा इजाजत अपन रेडियो साथी कृष्ण कुमार सावला और सुनत रहा ये प्यारा सा छत्तीसगढ़ी गीत ला।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। प्रधानमंत्री।

गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि

बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्चल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं, वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफ़ी पिक्चरें देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड वाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफ़ी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कई फिल्म वालों को भी कैसे दिया करता था मैं। तो वहाँ से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसे देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा, तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज़ किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफ़ी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि ये पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमज़ोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से हो, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं।

0: वो तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज 3 में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
1: जी,
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने कि मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, और मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉरपोरेट बनाई 2006 में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी

0: 10 बजे सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहिर भैरव। इसी कार्यक्रम में इन्हीं का बजाया गिटार पर राग हेमंत सुनिएगा रात 10:30 पर। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। रंग महल की सभ्यता ये रूपक सुनेगा दोपहर 1:30 पर। लेखक भरत तोड़ा और प्रस्तुति डॉक्टर गौरव यादव की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। वित्त विभाग से भी इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। शासन ने निर्धारित आरक्षण और नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257% की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। राजधानी रायपुर में कल स्कूल शिक्षा विभाग की एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस बैठक में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही न आए बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में आने वाले समय में छात्राओं के लिए 8,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से यह परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। आज राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। कल मंगलवार को राज्य के बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। बड़े बचेली में 17, राजिम में 11, बीजापुर में 9 सेंटीमीटर और मंदिर हसौद में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से वर्षा में कमी आ सकती है। कल छत्तीसगढ़ शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने रैली निकाली। इन शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग शामिल है। रैली के पश्चात इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है।

0: नमस्कार।
1: बीते हफ्ते हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनेंगे 11:00 से 11:55 तक और 12:00 से शाम 5:00 तक। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुनेंगे। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम होगा 11:55 पर। आज शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम खबर हाथी खबर कोट। 5:10 पर पॉप गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा पॉप टाइम। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय होगा संध्या 5:30। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा। सुनिएगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00। 6:10 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुनेंगे 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। सुनेगा नसीहत खेती की लागत घटाने में वेस्ट डिकम्पोजर की भूमिका। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9:00 विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
0: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने, सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein is geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें, तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

हमारी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। सुबह के 10:10 हुए हैं, लीजिए कार्यक्रम सुनिए।

संगीत सुगम संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में। इस गीत को गीत और संगीत है ललित सेन का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें।

0: वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए गीत को, जिसे सुरों में ढाला है जतिन शर्मा ने। स्वर है अनेक धार का।

0: कि यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाश

0: आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: सुगम संगीत में लीजिए अब हम सुनियान, अब सुनिए सोनू निगम के स्वर में फैज अनवर की शब्द रचना को संगीत साजिद वाजिद का।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के स्वर में फैज अनवर के लिखे हुए गीत को। संगीत है निखिल विनय का।

उदित नारायण के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी रेडियो साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साहब का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज आप अपने पसंद के गीत सुनेंगे मेरे साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार से। आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है माँ महामाया चौक मेघापारा से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु दिव्या, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष नंदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, लालपुर से भुनेश यदु और समीर यदु। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में और महेंद्र कपूर के स्वर में इस प्यारे से गीत को।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आनंद, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के स्वर में, योगेश की शब्द रचना, संगीत सलील चौधरी का। गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण बाधवानी, बिमला बाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी, शुभम बाधवानी, राजपाल खिलवानी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। ताजपुर मोरवा से पत्र लिखा है भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: जानवर, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और मनहर उदास के स्वर में। गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है ग्राम भानपुरी मुसरा जिला राजनांदगांव से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर मनेश्वर, लाक्षी तुलसी यादव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। पत्र के माध्यम से हमें इस गीत को सुनने के लिए खत लिखा है लंबोदर प्रसाद, फैलेंद्र कुमार, तरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, हेमंत कुमार, रामदयाल, तुलाराम, आर्यन, आमन, रूप बसंत, हरिशंकर, देवा पटेल, सीताराम निषाद। राजीव गांधी नगर चौक रायगढ़ से हमें पत्र लिखा है मनोज कुमार यादव, विशाल, राधी, साक्षी, रामलाल यादव। असालतपुरा मुरादाबाद से हमें पत्र लिखा है मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी ने इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: RBI कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला नगमा फिल्म बैराग से, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गीत सुनने के लिए हमें खत लिखा है। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्य, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, मोहन पारा कलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू, उमा देवी साहू, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी बेमेतरा से, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम नगमा आप सबकी पसंद पर इस गीत को हमने लिया है फिल्म जूली से, स्वर किशोर कुमार का। इस गीत को सुनने के लिए ईमेल किया है मंदिर रोड नई दिल्ली मोती नगर से मानसी अरोरा, गौरव अरोरा, अनिल और कविता अरोरा ने। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता, छत्तीसगढ़ से धतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास पानीपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्ची। आइए आप सबकी पसंद सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ऐसे साथी जो ये कार्यक्रम हमारा पहली बार सुन रहे हैं या वे साथी जिन्हें अपने पसंद के गीत सुनने हैं, तो हमें ईमेल करें या पत्र लिखें। हमारा ईमेल एड्रेस है srotarayagad@gmail.com और पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन है 496001। तो दीजिए इजाजत कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी कृष्ण कुमार साहब को, और सुनते रहिए प्यारा सा नगमा।
1: हाँ, मैं तेरी याद में सबको

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। दिन के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: धुन है AR रहमान की, फिल्म का नाम है फिजा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाध फरमाएं एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्नाडे, एसडी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन। फिल्म का नाम है बरसात की रात।

शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समाप्त कीजिए गुलुकार तलत अजीज की आवाज में। मौसकी तरतीब दी है फिदा हुसैन ने। एल्बम का नाम है ये मिलन ख्वाब सा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आइए अब सुना जाए अगला गीत सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए, गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।
3: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है,

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

0: फैसला सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला है। अभी सरकार मध्य प्रदेश जैसी विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी ईकेवाईसी करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने बताया कि मौसमी इन्फ्लुएंजा आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों में जटिलताएं होने का खतरा अधिक रहता है। उन्होंने ऐसे लोगों को अधिक सावधानी बरतने और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद ए मिलाद उन नबी और ओणम के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की उपस्थिति में कल 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 से 29 अगस्त 2026 तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सीजीएसएसबी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने की जुड़ी सिफारिशों पर सहमति जताई। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद

0: और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

कार्यक्रम है यादों की महफिल और इस महफिल का झिलमिलाता हुआ अगला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: फिर से यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर, फिल्म का नाम है सूरज।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत, आवाजें हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनने के लिए जरा इबारत ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो जो श्रोता फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत जरा पढ़कर सुना देते हैं। जिंदगी में मिलती है जो मोहब्बत की घड़ी, तो दिल नील गगन की सैर करता है। वो पुरानी यादों की ही मेहरबानी है, सावन की बूंदें जब बरसती हैं, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे मनमीत बन जाते हैं। और बासंती पवन पागल बनकर बहती है। यहाँ पर कोई गाना याद आया? कौन सा गाना याद आया? हमें वैसे लगता है कि बासंती पवन पागल एक ऐसे कम ही गाने जिनमें ये तीनों शब्द आते हों, लेकिन अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल आगे जरा पढ़ दूं तो दिल पूछ बैठता है कि ऐ संदली हवा तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में। तुम्हारे इंतजार में चंपा कली देखो जो की जाए है, इस मौसम में कपट का कोई काम नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, जब ऐसा लगे कि सजनवा बैरी हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी। मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है, याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी। मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलते शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे में बस यही मलाल रह जाता है कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना। जो छूट गया वो समय की धारा में बह गया, पर उसकी सुरमई गूंज आज भी यही ठहरी हुई है। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपने इबारत पढ़ी थी, अब जब इबारत अपने आप से पढ़ी थी, जब मेरे मुंह से सुनी ये इबारत, तो आपके भीतर कुछ अलग भाव भी पैदा हुए होंगे। अब बहुत सारे भाव हैं इसमें। तो अब उन शब्दों को याद कीजिए जिन शब्दों से गाने आपके जहन में इस समय आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे श्रोता नदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हाँ नदी तो है इस शब्द में, नदी वाले कौन से गाने आपके जहन में वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गाँव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं, गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहेली भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आंखें फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गांव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबें या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नज़दीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल ज़रा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहाँ ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में, पूरी इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज़। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए ज़रा, गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था और रिमझिम बरसात से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है वो भी साझा कीजिए आप।

भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानी और रवि शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, क्या बात है। बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं, हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे। एक श्रोता

ने लिखा है, गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी, मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है, और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूँ, वहाँ गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहाँ कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई, नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक, आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी क्योंकि हम MP वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता, चंपा कली देखो, नदिया किनारे हेराई, आई कंगना मैं न भूलूंगा, मैं न भूलूंगी, सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है, तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था, उसमें भी तलत महमूद की आवाज़ थी। अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, लागी नहीं छूटे रामा। गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गांव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती हैं। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना ज़रूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम माँ समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल। और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल फिल्म जिस देश में गंगा बहती है लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहां पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या बहुत ज्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ही नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो जमीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का लीचा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाए। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हायरी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे श्रोता

0: नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।
1: नदी नारे

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुन कर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नज़दीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वहीं घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी

बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं, लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो ज़रा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात ज़रूर बताइए। मुकेश की आवाज़।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। और ज़रा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पौना राम नदियाँ हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन ज़रा पहली बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहाँ ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी और ये हमारा सवाल था गंगा मैया। ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी। मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था, तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे।

शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताएं इसी महीने में है। अब आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम। फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद की किस्मत अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रति

होता है जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देव बर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

0: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।
1: दो दीवाने शहर में।

इस घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी समेटे रहता है। हर कोना किसी स्मृति का संरक्षक बन जाता है।

शायद यही कारण है कि घर से दूर जाने पर उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहां जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहां रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियां वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
1: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के

0: प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
1: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
2: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
1: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। आईएमए ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। आईएमए ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की

0: शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुआ जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया,

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा,
4: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।

0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हमसाया।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूं या पूछना चाहती हूं।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी, कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में पूछ कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
2: है। हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
1: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
2: पुरुष जवाब दे।

0: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
1: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
0: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
1: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाए, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
0: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: और शब्द हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देखकर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, अरे काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल
0: सहज ईर्ष्या है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
1: विकराल रूप ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
0: दूसरों के बारे में।
1: उनके क्या विचार हैं या उनके क्या उदाहरण हैं, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जिसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी
0: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है, तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद मिलाद, तो ईद मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है ओणम। फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है ओणम।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना

0: मिलता है तो कितना स्वाद बढ़ जाता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी
0: वो खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं। हाँ। कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है और हम इसीलिए

0: साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्योहार है, तो क्यों ना हम केरल
0: की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है। और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
1: और उन्हें GI टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं।
1: और है ना, वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और इसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
0: क्या बात है, वो आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्त तो लगता है देखकर। अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्षा शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में
0: हमारे हाथ जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं टिप्पणी?
0: जी जी।
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को, दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: लोग परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और अपना अच्छा कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा।
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती है। ये एक सहज ईर्ष्या होती है, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है। लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या लिखा है।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: भाई तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ों अगर उसे आंगन में क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा ऐसी बहाने साफ सफाई हो जाती
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है, क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर
0: तो,
1: हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। और अगर हम सिर्फ जलते कूदते रहे तो वो नकारात्मक ही हो गए।
1: घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।

0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई।
1: और कई व्यंजन भी नहीं लिखे
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे
1: कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा कि महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं, ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है
0: और कर्मों का।
1: और एक सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: के नाम से पहचान
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और विश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी,
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए।

0: अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं। एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचानी भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर

0: की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे, उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
1: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे, और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने, और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
0: आप सुनवा दे,
1: सुनवाते हैं।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है। मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं
1: जी।
2: मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे। मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे ही मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था
1: बिल्कुल।
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहां पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे वो कल्चर ज्यादा था
1: जी।
2: ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा।

0: होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुँचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
0: फिर नेपाल, फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
0: वो, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे, तो एक जो है अपनापन बन गया। टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, उस बारे में कुछ बताएं,
0: तो उस समय
1: बात है।
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके, तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्य कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई। और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट्स के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा नहीं। हाँ, मैं पागल हो गया,

0: तुम एक काम करो, पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे बॉम्बे उसे बॉम्बे कहते चले जी, जी। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8th में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं कलकत्ता नहीं मेरे बॉम्बे ले जाएगी।
1: चाहता है।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था। सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करना।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन हाँ, फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है। बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है। वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें।
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।

0: गया।
1: बात चलिए नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से अब जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम

0: आता है, और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो?
1: कमाल,
0: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सबके?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
0: जी।
1: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
0: मेरा कल्चर,
1: मेरा शहर
0: जी,
1: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
0: जी,
1: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर और अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
0: बिल्कुल।
1: और
0: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
1: जी,
0: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें,
1: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
0: जी,
1: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो।
0: बिल्कुल।
1: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
0: मैं सबसे अलग।
1: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
0: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
1: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
0: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की, 80s 90s से आप जुड़े हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं। तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान चल रहे हैं, क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिमी देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी।
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं। और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है,

0: ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पे बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं, वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
1: जी।
0: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
1: जी।
0: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में था श्रीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा,
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छा।
0: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा,
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके

0: आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है। तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है। सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है। फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी। फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की. तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक.
1: जी जी.
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है. मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था. अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में. और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे. मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए. उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन नफुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी. फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी. उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी. एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए. मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है. तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था. तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी. तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए. पूछा मेरे नाटकों के बारे में. मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, एक नाटक है वराचिड़ी बिंदे, ये एलकुंचर की नाटक, वो उस पर वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए.
0: अच्छा
1: जी. टीवी फिल्म. तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा. तो मैं अपने फोटो वोटो देखे बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया. फिर बातें भूल गया मैं, दो तीन साल गुजर गए. फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे. ये मुझे पता नहीं था.
0: अच्छा.
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने. मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था. तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था. पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से.
0: अच्छा.
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं. और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है. तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया. उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवेल है, नॉवेला 1084 की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी. मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो. तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया. अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है. तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, तीन तरह के ऑडिशन जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था. ऐसे तीन तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ. उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है. लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता. उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है. वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती. फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी. मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी. तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है. तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में. तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ. इसमें मुझे मौका मिला काम करने का. तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ,

0: वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: फिर
0: हैं
1: से
0: कि एक,
1: जिया आपने
0: हाँ
1: उसे उस माहौल को।
0: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, वहां श्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरी को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे,
1: जी,
0: हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया
0: और
1: भादुड़ी
0: जया
1: जी
0: जी,
1: और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे,
1: जी
0: जया जी जिनकी शुरुआत सती इत्रे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
1: ऐसा ही लगा
0: जिसको दिल से चाहो तो, और भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों पे मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका।
1: जी, जी, जी।
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी, जी।
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा।
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा। उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा।
0: अच्छा।
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे। मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: मैं कलाकार, एक आर्टिस्ट,
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था।
0: अच्छा।
1: आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का, टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर्स थे,
0: आ रही थी, हाँ, बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म ही कर रहे थे,
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर था,
0: बिल्कुल।
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी उसमें जाएंगे
0: जी,
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहाँ या वहां फिट नहीं होता है
0: जी।
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं था, वो ड्राइव नहीं था, मैं अपने प्रूव करूं कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी नहीं किया
0: इस तरह के रोल में।
1: जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था, और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन, मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे, आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाह

0: और एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थिंकिंग वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था। वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने
1: जी
0: लगे तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं
1: बिल्कुल
0: जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन
1: बिल्कुल
0: आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं
0: जी
1: उनके भी बहुत जगह है, बहुत
0: ओटीटी
1: किरदारों
0: में
1: की
0: तो
1: जगह है,
0: हाँ
1: जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
0: बिल्कुल,
1: वो
0: नहीं,
1: यहां पर
0: ओटीटी में एक
1: अभी।
0: अच्छी बात ये हुई कि
1: जी
0: ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को तीन सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो
1: बिल्कुल
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले ही वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने
1: जी
0: एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चले जाता है,
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
1: बिल्कुल
0: सुष्मिता सिंह के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
1: जी
0: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां
1: जी
0: आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
1: जी
0: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
0: जी मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं, बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मंजिल
0: गाना
1: तुमसे,
0: है, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ
1: जी।
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी, जी।
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी।
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, पसंद किए गए हैं
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी।
1: मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग। हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था तो
0: जी।
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए पता नहीं साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012-18 बी मूवी करके की और फिर वार्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्म करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया और कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी,
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा,
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी,
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था।
0: जी,
1: वो बड़ा ही रूडल लीडर नहीं था कि ऐसा करो वैसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी तो उन्होंने मुझे चुना। तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल। तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री,
1: जी,
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे बहुत।
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो भी अभी करने को मौका मिल गया है
0: जी।
1: वो वर्टिकल्स जो है वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाता है।
0: हाँ हाँ,
1: ठीक है, तो अब वो उसका दौर आ गया। अब उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंढरा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये पिंडारी, कोटराही, मदनपुर, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, धौरा, बिशुनपुर, सिलाजू, उचेरवा, चीनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, शिवपुर, रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, घासीडी, सरगा, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूरचुंदी, कुंजारा, पाकर टोली, श्री टोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी, देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी, गुड़ागढ़, अचानकपुर, तेंदुचुआ, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा

0: उकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार
3: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। डीजी अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा। इसके साथ ही आप सुनेंगे क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत का वक्त होगा शाम 6:20 और शाम 7:00 का। 7:20 पर सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। आज की नसीहत में आप सुनेंगे खेती की लागत घटाने में वेस्ट डीकम्पोजर की भूमिका। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:20 पर। फिल्म संगीत रात 8:30 पर आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत एक बार फिर से दोबारा आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 का वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गुलदस्ता का। ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com SHROTARAIGARH यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। आइए सबसे पहले सुने KK की आवाज।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: पॉप टाइम कार्यक्रम में आइए अब सुने जय वालिया की आवाज में ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

पॉप टाइम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो की आवाज में फैज अनवर का लिखा गीत। इसी के साथ ही पॉप टाइम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और आप सभी के चहेते कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास बड़ी बड़ी इमारतों, युद्धों और सत्ता के किस्सों से नहीं बल्कि किसी इंसान के छोटे से दयालु स्पर्श से लिखा जाता है। किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी बेसहारे को सहारा मिल जाए, किसी बीमार के चेहरे पर मुस्कान लौट आए और किसी अकेले इंसान को ये एहसास हो कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, शायद इंसानियत का इससे बड़ा रूप कोई नहीं हो सकता। ऐसी ही करुणा, सेवा और मानवता की मिसाल थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे में हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और आज उत्तरी मैसेडोनिया में है। उनका मूल नाम एग्नेस गोंझा बोयाजियू था। बचपन से ही उनके मन में सेवा और जरूरतमंदों के प्रति संवेदना थी। आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया और दुनिया उन्हें प्रेम और करुणा की मिसाल के रूप में जानने लगी। भारत से उनका विशेष जुड़ाव रहा। वर्ष 1929 में वे भारत आई और कोलकाता में रहते हुए उन्होंने लंबे समय तक लोगों के बीच सेवा का कार्य किया। उन्होंने निर्धनों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की मदद को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने 1950 में मिशन रीच ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसने आगे चलकर दुनिया के कई हिस्सों में जरूरतमंद लोगों की सेवा की। दोस्तों, मदर टेरेसा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे जरूरतमंद व्यक्ति को सिर्फ मदद पाने वाले इंसान नहीं समझती थी, बल्कि उनमें भी वही सम्मान और मानवता देखती थी जो हर व्यक्ति का अधिकार है। उनके लिए सेवा का अर्थ सिर्फ भोजन या दवा देना नहीं था, बल्कि किसी इंसान को अपनाना, सम्मान और उम्मीद देना भी था। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से बिताया। उनका पहनावा सादगी का प्रतीक था और उनका जीवन दिखावे से दूर था। वे मानती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा सा प्रयास, एक संवेदनशील शब्द और किसी की मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, उनकी सेवा का प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा। मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों के लिए कई सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वर्ष 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इन पुरस्कारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो विश्वास था जो लोगों में उनके लिए बना। उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि इंसानियत की कोई जाति, धर्म, भाषा या सीमा नहीं होती। किसी जरूरतमंद की मदद करने से पहले ये पूछने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि वो इंसान है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। करुणा सिर्फ किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना नहीं है, बल्कि उसके दुख को कम करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करना भी है। जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, बुजुर्गों की सेवा व मदद करना, किसी बीमार की मदद करना, अगर कोई बहुत परेशान है तो कुछ पल उससे बात करके उसे अच्छा फील कराना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, उन्हें भोजन व पनाह देना, सभी जरूरतमंदों का सेवा व सम्मान देना, हम ये छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी जयंती पर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और समाज में प्रेम, दया और इंसानियत

को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, आज करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, वो हमेशा की तरह ही हमारी प्रेरणा स्रोत रहेंगी और हम उन्हें ऐसे ही याद करते रहेंगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर। आज है क्रम तरुणों की पसंद, जिसमें हम आप श्रोताओं के पसंद गीत सुनने वाले हैं। तो क्रम तरुणों की पसंद में हमारी पहली प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत, सोनू और अलका की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी दुर्गा चौक मिठ्ठूमुड़ा रायगढ़ से गेंदला श्रीवास, बिहारी पटेल, दिलीप संतोष श्रीवास, रमेश पटेल, पप्पू पटेल, कल्पना व नैना पटेल। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सारथी, सुषमा सारथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। मुकाम फुलसर व्याया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास शीला दीवान, ओम प्रकाश रुकमणी, जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य, कुमारी सानवी और समस्त परिवार।

दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्रम की ओर, जिस क्रम में होता है ज्ञान का भंडार और सभी हमारे श्रोता साथियों को रहता है हमारे इस क्रम का इंतजार, जिसमें हम आप सभी श्रोता साथियों को देश, दुनिया और खेल जगत से जुड़े खबर पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम घटना चक्र की। तो आइए शुरू करते हैं क्रम घटना चक्र।

मिल्की वे में सबसे तेज गति वाले तारे S31 को का पता चला है। ये तारा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के चारों ओर लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है और 8.7 साल में एक चक्कर पूरा करता है। इसका पता यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लॉज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर से लगाया गया है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ उत्कृष्ट सेवा के लिए 210 भारतीय पीसकीपर्स को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2026 तक 1,775 कर्मियों के साथ भारत UNMISS में सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता था। महात्मा गांधी के 668 हस्तलिखित संदेश 16.20 करोड़ रुपए में नीलाम हुए। ये देश में किसी ऐतिहासिक दस्तावेज की नीलामी का नया विश्व रिकॉर्ड है। सेफन आर्ट ने इन्हें गांधी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी हिंगोरानी नाम से नीलाम किया। केरल की कैजिया लीज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। 19 साल की कैजियो अब नवंबर में प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रनर अप रही और उन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब मिला। गुजरात की अनुश्री सातवलेकर सेकंड रनर अप रही। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। प्रोफेसर चौधरी का नाम देश भर में चयनित 21 उत्कृष्ट शिक्षकों अथवा संकाय सदस्यों में शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़े खबरों की ओर। मोंडो डुप्लांटिस ने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता। डुप्लांटिस ने पेरिस ओलंपिक में 6.25 मीटर की ऊंचाई पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और विदित गुजराती एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जॉली शामिल हैं। काजल धोचक ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए स्लोवाकी में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार खिताब जीता, जबकि तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीता। काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर 76 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव अब एशियन गेम्स में भी पदक की दावेदारी करेंगी। छत्तीसगढ़ की कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी का चयन जापान में होने वाले 20वीं एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम में हुआ है। दोस्तों, क्रम घटना चक्र में बस इतना ही। यही समाप्त होता है क्रम घटना चक्र।

दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अग्रम तरुणों की पसंद में हमारी अगली प्रस्तुति फिल्म गर्व का ये गीत। उदित और श्रेया की आवाजों में गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार हैं साजिद वाजिद। इस गीत के पसंदकर्ता हैं हमारे श्रोता साथी ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, रीतु और ऋषभ सिंह। गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता।

दोस्तों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा में, जिसमें हम जानेंगे कि भूकंप से बचाव के लिए अफवाहों से बचना और धैर्य बनाए रखना कितना जरूरी है। दोस्तों भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के अचानक से आ सकती है। कुछ ही समय में धरती के हिलने से लोगों में डर और घबराहट पैदा हो जाती है। भूकंप के दौरान अफवाहें स्थिति को और गंभीर बना सकती हैं। सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों पर कई बार बिना पुष्टि की खबरें तेजी से फैलने लगती है, जैसे दोबारा बड़ा भूकंप आने की बात, किसी इमारत के गिरने की झूठी सूचना या किसी स्थान को असुरक्षित बताए जाने जैसी बातें। ऐसी जानकारी लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर सकती है और भागदड़ मच सकती है। इसलिए भूकंप के समय हर खबर पर तुरंत विश्वास रखने के बजाय उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। किसी भी सूचना को आगे भेजने से पहले ये जरूर देखें कि वो विश्वसनीय सरकारी एजेंसी या आधिकारिक स्रोत से आई है या नहीं। अफवाहों को फैलाने की बजाय अपने परिवार, दोस्तों और आसपास को भी शांत करने के लिए प्रेरित करें। भूकंप महसूस होने पर अगर घर के अंदर हैं तो झुके मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाकर सिर और गर्दन को ढकें और उसे पकड़कर रखें। खिड़कियां, कांच, अलमारी और ऐसी वस्तुओं से दूर रहें जो गिर सकती है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। भूकंप रुकने के बाद भी सावधानी जरूरी है। क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें और स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें। याद रखें कि किसी भी आपदा के समय सही जानकारी व धैर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भूकंप आए तो डर नहीं, धैर्य और सतर्कता अपनाएं, अफवाह नहीं सही जानकारी फैलाएं और सुरक्षित रहें। दोस्तों आइए सुनते हैं क्रम तरुणों की पसंद में हमारी अगली प्रस्तुति फिल्म कृष्णा कॉटेज का ये गीत श्रेया की आवाज में। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है अनु मलिक। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथलेश, तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर।

दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने गीतों की फरमाइश हम तक भेजते हैं। दोस्तों, हमसे पत्र व्यवहार करने के लिए, हमें पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है क्रम तरुणों की पसंद, युवाड़ी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र, रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन कोड है 496001। दोस्तों, इसी के साथ ही आप हमें हमारे पते पर ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। सब्जेक्ट में क्रम तरुणों की पसंद जरूर लिखें। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त ऋषि यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेज

0: की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर और शाम 7 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। किसान भाई कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। आज की नसीहत में सुनिएगा खेती की लागत घटाने में वेस्ट डीकम्पोजर की भूमिका। और साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:20 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8 और रात्रि 10:00। 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों का।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और

रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका मा काली देश भर मा खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के सम कार्यक्रम रखे जाही। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले युवा मन ले करही संवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहूहा आज बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवाला हरा झंडा दिखा के रवाना करिन। और छत्तीसगढ़ समेत देश भर मा आज ईद मिलाद उन नबी श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में काली 27 अगस्त के देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम रखे जाही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्चुअल माध्यम ले देश भर के अलग अलग जगह मन में मौजूद 8,00,000 ले ज्यादा युवा मन ले संवाद करही। ये कार्यक्रम ला हरेक जिला के 2 प्रमुख महाविद्यालय में रखे जाही। एक तहत युवा प्रतिभागी मनला स्थानीय खेल हस्ती सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि मन के संग सोझे गोट बात करे के मौका मिली। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट के एक ठिन युवा संवाद सत्र घलो राखे जाही जेखर माध्यम ले युवा अपन विचार आकांक्षा और नीतिगत

0: सुझाव व्यक्त कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सेवा तीर्थमा प्रगति मंच के 53वां बैठका के अध्यक्षता करीन। ओमन कहिन के परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजना के योजना बनात समय जिहां संभव हो बिजली पानी और दूसरा सेवा पर साझा गलियारा विकसित करे जाना चाहिए। बैठका में नौ राज्य ले जुड़े रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र के 6-3 प्रमुख परियोजना के समीक्षा करेगी जेखर कुल लागत 30,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रखे गए कार्यक्रम में बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा ला हरा झंडा दिखा के रवाना करें। ए मौका में ओमन कहिन कि ए रेल सेवा के नियमित संचालन ले बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच अवई जवई और ज्यादा सरल होगी। ये ट्रेन हरेक बुधवार के बिलासपुर ले मझनिया 2 बजे रवाना होगी और अवैया दिन संझा 7 बजे यलहंका पहुंची। लौटत में ये गाड़ी हरेक गुरुवार के रतिहा 9:30 बजे यलहंका ले रवाना होगी। ये ट्रेन भाटापारा रायपुर दुर्ग राजनांदगांव डोंगरगढ़ गोंदिया सिकंदराबाद रायचूर गुंदकल समेत आने आने स्टेशन ले होके गुजरही। रक्षाबंधन तिहार के दौरान यात्री मन के सुविधा पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल है स्पेशल ट्रेन चलाए के निर्णय ले है। एक तहत दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 ले 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाए जाही। ये ट्रेन में कुल 10 ICF कोच रही जेमा 8 जनरल और 2 SLRD कोच शामिल है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहिन है कि स्कूल मन में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराए पर ही झन आवे बल्कि लैका मन के पढ़ाई ऊपर पूरा ध्यान देवे। ओमन कहिन के लैका मन के पढ़ाई में ध्यान नहीं देत शिक्षक मन ऊपर कड़ा कार्रवाई करे जाही। काली रायपुर में रखे गए विभागीय समीक्षा बैठका में श्री यादव कहिन के प्रदेश के स्कूल मन में अवैया समय में छात्रा मन पर 8,000 ले ज्यादा शौचालय के निर्माण कराए जाही। ओमन इहू बताइन के राज्य में 5,000 शिक्षक मन के भर्ती करे के प्रक्रिया जारी है। बैठका में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के संग्रह विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुई। रायपुर बिलासपुर दुर्ग और कोरबा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बस संचालित करे जाही। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया काली नवा रायपुर में योजना के तैयारी के समीक्षा करें। बैठका में रूट प्लान बस स्टॉप डिपो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लेके दिशा निर्देश देगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कुति। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ईद मिलादुन्नबी माँ देशवासी मन ला शुभकामना दिन है। ए मौका माँ रायपुर समेत प्रदेश के बहुत अकन जगह मुस्लिम समाज जुलूस निकाल थे। नगरीय प्रशासन विभाग नगरीय निकाय के पेंशनर मन के महंगाई राहत में बढ़ोतरी करे है। 7वां वेतनमान के पेंशनर मन ला अब 58% और 6वां वेतनमान के 257% के दर ले महंगाई राहत दे जाही। पेंशनर और परिवार पेंशनधारी मन ला 1 जनवरी 2026 ले एकर फायदा मिलही। प्रदेश में 1 सितंबर ले जम्मू श्रेणी के बिजली कनेक्शन के EKYC के प्रक्रिया शुरू होगी। EKYC पर आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम के मिलान अनिवार्य होगी। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिया अपन EKYC करा सकें। एक हर बार कोनो तरह के शुल्क नहीं ले जाही। भारतीय चिकित्सा संघ IMA है इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़त मामला ला देखत लोगन मन ले सतर्क रहे के आग्रह करीन है। IMA के कहना है

0: कि ज्यादातर संक्रमण हल्का होते और अपने अपन ठीक हो जाते। एकर भर घबराए के कोनो बात नहीं है। आइए मैं यहाँ लोगन मन ला फ्लू के लक्षण पर डॉक्टर के पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं ले के सलाह दीन। आइए मैं बताई कि H1N1 में आमतौर में अचानक तेज बुखार और जाड़ लगे, लगातार सूखा खांसी, गला में खराश, मांसपेशी में बढ़ पीरा और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते। दूसरा लक्षण में सरदर्द, नाक बहे या बंद होए के संग्रह, उल्टी दस्त शामिल हो सकते थे। 20 सितंबर के होवैया सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 ल अवैया आदेश तक स्थगित कर दे गए है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट है राज्य सरकार ल न्यायिक अधिकारी मन के सेवानिवृत्ति के उम्र ल 60 बछर ले बढ़ा के 62 बछर या अंतरिम रूप ले 61 बछर करे ऊपर विचार करे के निर्देश दिन है। इकसेती ए परीक्षा अवैया आदेश तक स्थगित करे गए है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अनिवार्यता के विरोध करत शिक्षक मन के मांग में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहिन कि मध्य प्रदेश के जैसे छत्तीसगढ़ में घलो विभागीय परीक्षा लागू करे ऊपर विचार करे जाते। उमन कहिन कि ए सरकार की नहीं बल्कि ए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसला है। दुर्ग जिला के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक मन की कमी लेके विद्यार्थी मन खैरागढ़ धमदा मुख्य मार्ग में विरोध प्रदर्शन करीन। प्रदर्शन के चलत ए रद्दा में अवई जवई बहुत बेरा तक प्रभावित रहीस। बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले फोन में आश्वासन मिले के बाद विद्यार्थी मन प्रदर्शन खत्म करीन। अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी वरुण जैन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में प्रतिनियुक्ति में जाही। उख नियुक्ति पुलिस अधीक्षक पद में होही। राज्य सरकार है प्रदेश के आने आने जिला में सहायक ग्रेड 3 के 100 ठिन रिक्त पद में सीधा भर्ती के स्वीकृति दे दे है। राजस्व विभाग संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला भर्ती प्रक्रिया शुरू करे के निर्देश दे है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करे बर शासन डहार ले गठित उच्च स्तरीय समिति के उपस्थिति में काली रायपुर में बैठक रखे जाही। बैठक में समान नागरिक संहिता के आने आने प्रावधान, सामाजिक प्रभाव और व्यवहारिक पहलू मनु पर चर्चा करे जाही। और छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा ले लगे मलकानगिरी जिला में सुरक्षा बल है आज माओवादी मन डहा ले लुकाए गए डंप बरामद करे है। एम हथियार, IED, क्लेमोर माइन और दूसर माओवादी जिनीस शामिल है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में काली देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम रखे जाही। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले युवा मन ले करही संवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा आज बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा ला हरा झंडा दिखा के रवाना करीन। और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुने कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दयावान से। स्वर है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के, गीतकार अजीज काशी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सलामी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे कुमार सानू और अलका याग्निक के, गीतकार थे समीर और संगीत नदीम श्रवण का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश भर के 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में कल रायपुर में होगी राज्य स्तरीय बैठक। और ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कल 27 अगस्त को देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को स्थानीय खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रूपये से अधिक है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की सलाह दी है। आईएमए ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी

प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर येल लहनका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा के नियमित संचालन से बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 7 बजे एलहनका पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे एलहनका से रवाना होगी। यह ट्रेन भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, सिकंदराबाद, रायचूर, कुतकल सहित विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने के रायपुर मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 से 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 ICF कोच रहेंगे, जिसमें 8 जनरल और 2 SLRD कोच शामिल हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही ना आएं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में आने वाले समय में छात्राओं के लिए 8,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। बैठक में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की EKYC की प्रक्रिया शुरू होगी। EKYC के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी EKYC करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने कल नवा रायपुर में योजना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रूट प्लान, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने पर विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस वजह से यह परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257% की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश

0: की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला है। बिलासपुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 49 स्थित केसला टोल प्लाजा प्रदेश का पहला डिजिटल टोल प्लाजा बन गया है। इससे अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय नागरिक घर बैठे ऑनलाइन लोकल मासिक पास बनवा सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की इस सुविधा के तहत आवेदक राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास का शुल्क ₹350 निर्धारित है। रायगढ़ जिले के परसदा केराझर वाटरफॉल में आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि वाटरफॉल में कुछ युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने वाटरफॉल में आम लोगों के जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को वाटरफॉल में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी वरुण जैन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उनकी नियुक्ति पुलिस अधीक्षक के पद पर होगी। NIA में प्रतिनियुक्ति पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले IFS अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। राजस्व विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देशभर के 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में कल रायपुर में होगी राज्य स्तरीय बैठक। और ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिन्दी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: वारिस फिल्म में ये आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीत दिया था उत्तम जगदीश ने।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
9: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
4: मन का सुकून, दिल की आरती,
5: सुरीली संदली।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
9: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
4: मन का सुकून, दिल की आरती,
5: सुरीली संदली।

0: लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलिन का था।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर से। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल के बैठ की माँ कार्यक्रम सुनो या सबो संगी संगवारी मन ला स्वप्निल के राम राम। त हमन आज के बैठ की में आ गए हन और आनी बानी के गोट बात करे के विषय अलग हलो लेके आने हैं। जैसे कि आज हमन बात करबो कि कम जमीन में ज्यादा फायदा बर कैसे अंतर फसली खेती करे जा सकत है, हमन खेती के लागत ला घटाए बर वेस्ट डिकम्पोजर के कैसे काम ले सकत हन अपन खेती में, ओकर बारे में भी बात करबो। और अपन जानबो कि कुपोषण ले मुक्ति पर अपन कैसे पोषण वाटिका अपना सका था और अपन घर के बाड़ी में लगा सका था। हमन बीच बीच में गाना घलो सुनबो, लोकगीत और भेंटवार्ता घलो सुनबो। तो सबले पहली अगर बात करे जाए अभी मौसम के, तो अभी थोड़कुन पानी है और गिरना बंद हुई से और खेती बाड़ी के काम बूता जो है वह चलत हावे। और हर बछर में अगर आप मन एके फसल लगा था तो आप मन ला नुकसान ज़्यादा हो सका थे, तेकर ले बचे बर आप मन अलग अलग फसल ला अपना सका था। और अलग अलग फसल ला अपनाहा था आप मन के जो माटी के उर्वरता है वह बने रही। एकर अलावा आप मन अगर कम जमीन वाला किसान है, आप मन करा जमीन थोड़कून है और आप मन चाहा था कि अपन ज़्यादा फसल लगावा और आप मन के जो मुनाफा के प्रतिशत है वो हर ज़्यादा बढ़ के रहे, तो आप मन अंतर फसली खेती कर सका था। ये हर बहुत बढ़िया उपाय हावे आप मन के कम जमीन में ज़्यादा फसल और संगे संग ज़्यादा मुनाफा कमाए बर। और एकर ले ये होते कि आप मन के कम जमीन जो है ओकर पूरा उपयोग हो जाही और आप मन के जो फायदा के प्रतिशत है वो हर दिन के दिन बढ़त रही। अगर हमन बात करबो अंतर फसली खेती के, तो अंतर फसली खेती में आप मन कई फसल जो है मतलब कई अलग मुख्य फसल के अलावा और कोनो कोनो फसल ला लगा सका था और फायदा ला कमा सका था। एकर ले कम जगह के जो आप मन के खेत है ओकर पूरा उपयोग हो जाही, भले हो और एक टुकड़ा में काबर नहीं हुए मगर उनमें बहुत सारा फसल हर मिल सकत है। एकर अलावा मुनाफा जो है अगर मान ले वह मुख्य फसल हर कोनो भी कान

ले खराब हो जाही, तो जो दूसर फसल आप मन लगाए हा ओकर ले आप मन के आमदनी तो हो जाही, ओकर अलावा आप मन माटी के उपजाऊ क्षमता ला भी बढ़ा सकत हा। समय समय में होने वाला कीट रोग जो है, बीमारी है, ओकर ला अपन फसल ला बचा सकत हा, आप मन के भुइयां भी घलो बात जाही। ओकर अलावा आप मन का है पूरा समय में, मतलब कि पूरा जो साल भर के 12 महीना है उसमें आपन पूरा फसल उगा सकत हा, माटी के पूरा उपयोग हो जाही। एमे आओ आपन सब्जी भाजी फल सब ला लगा सकत हा, बस अपन ना ध्यान देना है कि जो फसल है ओकर जो दूरी है, ओकर समय है, और थोड़कुन आगे पीछे रहे एके संग रही तो अपन ला थोड़कुन नुकसान होए के संभावना है। अपन ला ध्यान रखना है, जैसे एक फसल के जड़ गहराई में है तो अपन ला कोशिश करना है कि दूसरा जो फसल है ओकर जो जड़ है वो कम गहराई वाला हो, तो ओकर ले का हो ही कि दोनों फसल के जो जड़ है उनमें पानी और खाद जो है वो हर बराबर मात्रा में मिल जाही। अगर एक फसल ऊंचा है और दूसर फसल के अगर हाइट के बात करबो तो हर अगर कम हुई तो दोनों फसल ला पर्याप्त तो मात्रा में धूप मिल सकत है। ओकर अलावा एक फसल अगर जल्दी पकने वाला है तो और दूसर फसल जो है वो हर कम दिन में पक जाते और दूसर हर ज़्यादा पकत है, तो एक ले फ़ायदा ये हो सकत है आप मन ला कि एक के आप मन कटाई बुआई सब कंप्लीट कर डाले हा और उकर बाद दूसरे का आप मन करिया, तो आप मन के जो बुआई के बाद कटाई के जो समय आही ओमे थोड़कुन थोड़कुन अंतर रही, तो आप मन बाजार मूल्य होकर ले बढ़िया पा सका था। आप मन एकर अलावा में मूंग और उड़द या फिर मक्का ला भी मुख्य फसल के साथ लगा सका था। मक्का जो है वह लंबा फसल है और उड़द मूंग जो है वह जमीन में फैल के जगह लग भरते हैं, तो आप मन एकर समायोजन कर सका था। एकर अलावा आप मन चाह था तो अरहर मूंग या उड़द भी लगा सका था। अरहर कम अवधि में पक जाते और एकर ले बढ़िया दाल के शुरुआत होते जेकर ले पैदावार बढ़िया होते। और अगर आप मन ओकर अलावा गन्ना लगा था फिर ओकर साथ धनिया या प्याज लगा था तो वो बढ़िया है। गन्ना ला आप मन कतार में लगा देवा और जो खाली जगह बचा थे ओमे आप मन धनिया उगा सका था। धनिया ला तो आप मन बार बार भी उगा सका था। और ओकर साथ आप मन जैसे प्याज या फिर लहसुन लगाए हैं तो वो भी बढ़िया है, ओहर आप मन के जमीन में उगत रही, बढ़िया बढ़त रही, एती गन्ना के भी फसल बढ़िया ऊपर चढ़त रही। फिर अगर आप मन चाहता था तो कपास या मूंगफली ला लगा सका था। कपास या मूंगफली ला अगर आप मन लगा था तो पैदावार तो बढ़ते ही संगे संग में जो कीट होते ओहर एकरले कीट जो है ओकर समस्या कम होते। तो आप मन अगर कोशिश करिए तो आप मन मुख्य फसल के संग ये फसल ला लगा सका था। एकर अलावा अगर हमन अंतर फसल के बात करबो तो एकर खेती में कई तरीके के प्रकार होते जेला आप मन उपयोग कर सका था, जेला आप मन अपना सका था। जैसे कि पंक्ति अंतर फसल एला हमन रो इंटरक्रॉपिंग कथन। एमे का होते कि मुख्य फसल जो रहते ओकर संगे संग आप मन निश्चित कतार में दूसर फसल जैसे कि मक्का उड़द या कुछ भी अपन जो आप मन सोचे हा ओला लगा सका था। फिर आते पट्टी अंतर फसल जिला अपन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग कथन। एमे का होते कि फसल के चौड़ाई जो स्ट्रिप में ओला उगाए जाते जेकर ले में मशीन जो होते हर बहुत बढ़िया ले काम हो कर सकते, मगर छोटे जमीन वाला जो किसान संगवारी है ओमन पट्टी अंतर फसल ला कम अपनाते, काबर की अगर जगह कम है तब मशीन ला चलाए में तो थोड़कुन परेशानी हो सकते। एकर अलावा रिले अंतर फसल होते जिला हमन रिले इंटरक्रॉपिंग का था। एमे का होते कि पहली फसल के कटाई होते ओहर पूरा पके लगते ओही समय में दूसर फसल के बुआई कर दे जाते, मतलब एक फसल के कटाई हो ही और दूसर फसल के बुआई हो जाही, मतलब पहली एक फसल के कटाई हो इस ओला आप मन बेच के सकीहा तहाँ ओकर कुछ दिन बाद में जो दूसर फसल है ओहर तैयार हो जाही। फिर आते हैं मिश्रित अंतर फसल जेला हमन मिक्स इंटरक्रॉपिंग कथन। एमे दो या फिर दो ले अधिक बीज के आपस में मिला के कतार प्रबंधन करे जाते और वाला सीधे आपन बो सका था, मतलब आपन माटी पलट के बढ़िया आपके जो खेत डोली है ओला तैयार करा और जो भी आपन फसल उगाना चाहता ओकर बीजोपचार करा और बीजा ला डायरेक्ट एक आपमन के खेत में बीजा ला सीधे छीटा जावा और ओकर ले का हुई फिर आपके फसल के जो पौधा हुई ओकर बढ़वार होत हुई। अगर आप मन सोचा था अंतर फसल ला अपनाना मगर आप मन ला ये नहीं पता है कि ओकर लाभ का है, तो एकर जो शुद्ध फसल है वो हर बहुत ज्यादा हो जाते, मतलब उपज आप मन के बढ़ जाते। मुख्य अंतर

0: असल में ये फायदा होते कि जोखिम के जो प्रतिशत है वो हर बहुत कम हो जाते। मतलब कि मौसम या बीमारी के कारण एक फसल अगर खराब हो जाए तो दूसर फसल ले किसान अपन आमदनी ला कर सकते है। मृदा के स्वास्थ्य जो है वो हर बने रहते और अनाज वाला जो फसल है वो हर बढ़िया ले उगते। और दलहनी फसल अगर आपन लगा था तो उनमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हो जाही, संसाधन के जो है वो हर बढ़िया ले उपयोग हो जाही। गहरी जड़ वाले जो होते या फिर कम जड़ वाले जो फसल है वो ओलम का होते कि मिट्टी के जो पोषण तत्व के स्तर होते वो और अलग अलग तरीका ले उपयोग हो जाते और नमी के बेहतर तरीका ले अवशोषण हो जाते। खरपतवार और कीट नियंत्रण के अगर हमन बात करबो तो खाली जगह घिर जाते तो ओकर ले का हो ही, खरपतवार कम ही उगी और फसल में जो कीट होते वो हर भी कम उगी और वो मन ले का हो ही, अगर कीट ही ज्यादा नहीं हो ही तो आप मन के फसल के नुकसान भी कम हो जाही। तो आप मन जैसे मुख्य फसल जो भी लगा था, मान ले वा आप मन गन्ना लगा था तो गन्ना के साथ आप आलू सरसों या मसूर लगा सका था। आप मन अगर मक्का के मुख्य फसल के चयन करा था तो उड़द मूंग या सोयाबीन लगा सका था। आप मन अगर अरहर लगा था तो मूंगफली या कपास होकर संग लगा सका था। अगर गेहूं लगाना है तो सरसों या चना के चुनाव कर सका था। तो ये यह एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप मन इंटरक्रॉपिंग करा था। और एकर अलावा आप मन थोड़कुन थोड़ा ध्यान देना है कि कम से कम उकर मैच्योरिटी पीरियड जो रहते है और कम से कम 30 दिन के अंतर होना चाहिए, नहीं तो एकदम एके संग में हो ही तो मिट्टी के जो पोषक तत्व है और कम हो जाए। अगर दोनों लंबा लंबा फसल रही तो आप मनला जो धूप के उकर प्रतिशत है वो मनला दोनों लग कम मिली तो आप मनला ओला भी ध्यान देना है। और आप मनला ध्यान देना है कि गहराई जो है एक के कम हो एक के ज्यादा हो, तो ऐसे फसल के आप मन चुनाव कर सका था। और ऐसे फसल ला आप मन उगा के अपन कम जमीन में ज्यादा फायदा कमा सका था। तो संगी हो ये तो रही समर हम आज के बात के गोट। तो अब हमन बात करबो अगर हमन तो हमन गे रहन गेजामुड़ा विकासखंड रायगढ़ के महिला दीदी कमला चौहान ले बात करे जो हर महिला समूह चलाते और कर ले चला जानबो कि कैसे महिला समूह में काम करके थोकुन पैसा कमाए जा सकते।
1: जय जोहार संगवारी हो, हमर आकाशवाणी कोती ले प्रयासरत है कि हमर अपन अंचल के प्रगतिशील किसान किसानिन दीदी समूह मन के दीदी मन ले बात करन, जानन कि ओमन अभी के बखत बेरा में कैसे काम बूता करत है। तो इही सिलसिला में हमन रायगढ़ के आगू गांव में आए हन और हमर संग में एक दीदी बैठी ने समूह के चलो ले बात करबो और जानबो कि अभी के समय में ओमन का काम बूता करत है और कैसे मन से मन के सहायता करत है। राम राम दीदी।
2: राम राम।
1: तुम्हार का नाम है?
2: कमला चौहान।
1: अच्छा, वो आप मन के गांव के नाम का है?
2: गजामुड़ा छोटे रामपुर।
1: अच्छा, तो छोटे रामपुर के आप मन। हाँ, तो ए समय में अभी आप का काम बुता कर था दीदी?
2: अभी तो समूह में जो में हाँ तो मैं ना पशु सखी बने हैं।
1: अच्छा, तो आप मन के जो पशु सखी आप बने हैं ये समूह के का नाम है?
2: मोर समूह के
1: हाँ
2: विजय लक्ष्मी शारदा समूह।
1: अच्छा, और कितनी समय ले आप समूह ले जुड़े हो?
2: फिलहाल तो 9-10 साल हो गए।
1: अच्छा, 9-10 साल ले आप मन जुड़े है तो मतलब बहुत पुराना है आप मन के समूह। तो आप मन के समूह में पशु सखी हैं सब जिन की और कुछ कुछ भी काम बोता करते हैं?
2: और कसु कसु है जैसे कि महिला ग्राम संगठन है।
1: हाँ,
2: तीन सिक्रेडर है।
1: हाँ,
2: जी सक्रिय महिला है जी कृषि सक्रिय में।
1: अच्छा अच्छा, तो आप पशु सखी है तो आप मन के काम का रहते दीदी गाँव में अपन का काम करता?
2: हमर काम है कि समूह बैठक में जाथन।
1: हाँ,
2: तो जानकारी देथन पशु पालन करे बर गथन कि।
1: अच्छा,
2: जो भी जानकारी मीटिंग में होते।
1: हाँ,
2: तो आके बताथन।
1: अच्छा, मतलब ग्राम के जो भी मन से वो मन ले साझा करता।
2: हाँ,
1: तो आप मन के जो मीटिंग होते ये हर हफ्ता में होते कि महीना महीना?
2: महीना में होते, एक महीना में एक बार।
1: अच्छा, तो आप मन एक जगह डिसाइड करे रहता कि ईच में आप मन करिए कि अलग अलग जन के घर में जा जाके
2: जो हमारे गाँव में मीटिंग होते ना।
1: हाँ, तो
2: समूह समूह बैठक अपन अपन एक हफ्ता के दिन होते अलग।
1: अच्छा अच्छा,
2: जो पशु साफी गलत है तो हर एक महीना में एक बार होता है।
1: अच्छा, आप मन एक बार ले था एक। हाँ, तो ये मीटिंग में जैसे का बातचीत हो तो ही भाई
2: मोर जो पशु साफी पशु पालन बढ़ावा कथन हमला।
1: अच्छा, मतलब अपन रोजगार के बारे में मनसे ला बता था पशु पालन करे बर प्रोत्साहित करता। तो आप मन के कहे के बाद जैसे कोनो अगर पशु पालन करना चाहते तो मन कौन जैसे कि योजना चलते सरकार के या कोनो वो सब जानकारी भी आपे मन उमन ला देते?
2: हाँ, हम जानकारी देते।
1: तो आप मन ला जानकारी कहाँ ले मिलते?
2: हम जो मीटिंग आप जो कुछ
1: हाँ हाँ, तो जैसे आप मन जो
2: बिहान प्रधान से हमला मीटिंग दिया जाते।
3: अच्छा, बिहान को तीले आप हाँ। मन ये मीटिंग दिए जाते तो उमे अधिकारी मन आके आप मन सब योजना परियोजना के जानकारी दे के जाते
2: हाँ।
3: तो उमन आप मन ला कोनो जैसे सहायता राशि देहे बर भी कुछ देते हैं काम?
2: हाँ, लोन देते ना।
3: अच्छा, ओमन लोन देते की?
2: हाँ, लोन से अभी बकरी पालन मुर्गी पालन जो करना चाहते जैसे कि अभी मोटी वही स्थिति नहीं है
3: हाँ हाँ।
2: तो मैं लोन लेके पशु पालन करूँ मुर्गी पालन करूँ या बकरी पालन अवला कम 1% ब्याज में छूटना रहते।
3: अच्छा, मतलब ये आप मन के समूह के जो पैसा रहते ओमे 1% के ही सिर्फ ब्याज लगते
2: और समूह के अलग है।
3: अच्छा,
2: समूह के 2% है
3: हाँ हाँ।
2: महिमा ग्राम संगठन जो कहते हैं 2% है
3: हाँ हाँ।
2: पशु पालन पर कहा था ना तो 1% है।
3: अच्छा, मतलब अब की कम प्रतिशत ब्याज दे के मन से मन काम भूता कर सकते हैं और आजीविका के साधन ना ढूंढ सकते
2: हैं। आजीविका कर सकते हैं, पशु पालन हो चाहे खेती बाड़ी से
3: हाँ हाँ। तो आप मन जैसे अभी पशु सखी है तो पशु पालन पर मन से प्रोत्साहित करा था, कोनो खेती बाड़ी ले प्रोत्साहित करा थे, मतलब सबके अलग अलग काम है।
2: अलग अलग
3: आप मन जैसे एक पशु सखी है आप मन मीटिंग में जाता तो एक आप मन ला भी कोनो फायदा होते, आप मन ला भी एक पैसा ऐसा मिलते का?
2: हाँ, महीना में मिलते।
3: अच्छा, आप मन ला भी वेतन मिलते?
2: हाँ, वेतन मिलते।
3: अच्छा, तो जैसे कि आप अभी काम करा था आप हाँ। योजना परियोजना के बारे में जैसे बिहान ले आप मन ला पता चला थे फिर आप मन से ला बता था हाँ। तो एकर फलस्वरूप में आप ला पैसा मिलते हाँ। ये पैसा ला आप समूह में देना पड़ते कि आप मन ला स्वयं मेला रखे ला पड़ते?
2: स्वयं रखते।
3: अच्छा, मतलब
2: खाता में आते?
3: अच्छा, आप मन के खाता में आते। तो आप ला ये समूह में काम करे ले फायदा होते कि नहीं होते?
2: होते।
3: तो आप भी अपन घर में जैसे लोग लड़का है उमन के पढ़ाई में सहायता करत हो अभी
2: हाँ।
3: तो आप भी पशुपालन करत है की? अच्छा, पहली करत रहा अपन, अभी बस पशु सखी हवा
2: हाँ।
3: और महिला तो ये जो अपन जानकारी देता कुछ भी परियोजना चलत है हाँ। या पशु ये अपन महिला मन ला देता या फिर कोनो भी जो गांव के मन से है ओला देता?
2: अभी तो फिलहाल महिला मन दे है, महिला समूह
3: अच्छा
2: चलत तो महिला मन के बैठा।
3: अच्छा, महिला समूह में जो है हर प्रोत्साहित करे बर ये सिर्फ महिला मन बर हवे? अच्छा, तो आप मन के और जो आप कहे है कि ये जो पैसा एमन 1% के ब्याज में तो आप के समूह में ले पैसा एमन लेते हैं कि?
2: समूह नहीं, हमार जोन कृष्णमुरा से ले थे ना
3: हाँ हाँ। अच्छा, ओ आप मन के दूसरे दूसर गांव ले पैसा हाँ। आते वहाँ ले उमन ला उधार में लेना हाँ। पड़ते और वो लोन में लेके पैसा ला उमन छूटते
2: हाँ,
3: तो एक कोनो समय रहते का कि अतकी महीना में इमन ला पैसा छूटना है करके?
2: हाँ, समय रहते ना।
3: अच्छा, ओकर समय अवधि रहते
2: महीना?
3: अच्छा अच्छा, तो ओतकी ओमन पैसा छूटते हाँ। तो आप मन अभी जैसे समझाए है तो मन से मन पशुपालन करत है का?
2: हाँ, फिलहाल तो अभी एक दो दिन हाँ बोलिन है
3: अच्छा,
2: बाकी ठीक से पता नहीं चल है।
3: अच्छा, मतलब जब पता चलते तो फिर ओमन आप जानकारी दे फिर जाता
2: हाँ। जाता।
3: अच्छा, पशु सखी आप हा और बढ़िया काम करा था अपन गांव में और हमन ला भी अतकी सुघर जानकारी दे हा, एक बार अब्बड़ कन धन्यवाद है, राम राम।
2: धन्यवाद, राम राम।
0: तो देखा अभी अमन सुनत रहे कैसे पशु सखी ओमन अपन महिला समूह चलाते हैं और कोनो कोनो काम बूता करत है और धीरे धीरे ओमन कैसे पैसा कमात हवे। जब हमन खेती करथन तो हमन चाहथन कि हमार जो लागत है ओहर घट जाए और ओला घटाए बर आप मन वेस्ट डिकम्पोजर होते जो ओकर आप मन उपयोग कर सका था और अगर आप मन वेस्ट डिकम्पोजर ला अपन घर में ही बना लिया तो ओकर भी लागत और कम हो जाए। हमर सरकार हर भी चाहते और हर बहुत प्रयास करते कि वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग जो हमर किसान मन है ओहर करें और सरकार जो है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF भी बनाए से जेकर द्वारा 20-25 रुपए के छोटे छोटे सीसी मिलते ओला भी आप मन उपयोग कर सका था और एकर ले बहुत कन फायदा है। जैसे कि अभी के समय में आप मन जाना था कैसे रासायनिक खाद के बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेले अब मनसेला बीमारी हो जाते, कतको परेशानी के सामना करना पड़ा थे, फसल में भी अब उसने दम नहीं रह गीस। ओकर अलावा अगर हमन मौसम के बात करबो तो ओहर भी बदला थे, माटी के उर्वरता नहीं बना थे, ओहर भी घट गीसे। तो अब हमन ला सचेत हो जाना चाहिए और यूरिया DAP और MOP ले मुक्ति पाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपन जैविक खेती की ओर बढ़ा, जैविक खेती ला करा और ओकर ले आप मन बढ़िया रहा, आप मन के स्वास्थ्य बढ़िया रही, माटी के स्वास्थ्य बढ़िया रही और ओला खाने वाला मनसे के भी स्वास्थ्य बढ़िया रही और पर्यावरण के हित भर भी वो हर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप मन अगर जैसे यूरिया खाद वगैरह उपयोग करा था तो ओमे का होते बहुत ज्यादा पैसा लगते, तो ओकर ले आप मन वेस्ट डिकम्पोजर ला यूज कर सका था। वेस्ट डिकम्पोजर के नियमित अगर आप मन उपयोग करा था तो माटी में उपयोग जो पहली ले रहते पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सक्रिय हो जाते। एक फायदा ये होते कि आप मन ला ओला अलग ले

फिर डालना नहीं पड़े तो ओकर पैसा बच जाते। पोषक तत्व के उपलब्धता जो है वह बहुत ज्यादा हो जाते। प्राकृतिक रूप ले पौधा जो है वह भोजन बनाए लगते, जेकर ले जो महंगा रासायनिक उर्वरक है ओकर निर्भरता जो है 30 से 40% तक कम हो जाते। और धीरे धीरे अगर आप मन एक उपयोग साल दर साल करी है तो एक जो मात्रा है वह शून्य भी हो जाए। एक अलावा जैसे अपन कोनो भी फसल उगा था ओकर बाद जैसे फसल कट जाते तो आप मतलब पराली के प्रबंधन जरूर करना चाहिए। कई किसान संगवारी मन का करते हैं कि फसल कट की इस ओकर बाद जो अवशेष बचते फसल अवशेष ओकर कोनो प्रबंधन नहीं करे ओलाओ मन सीधे से जला देते। जलाए ले बहुत कन नुकसान होते। पहले तो आप मन देखा पर्यावरण संबंधी अगर बात करबो तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होते। और अपन जाना था वैसे भी कि ऑक्सीजन के प्रतिशत जो है वह बहुत कम होगी से और अतकी स्मोक अगर हमन छोड़बो तो ओहर और ज्यादा बढ़ जाही। तो आप मन ला प्रदूषण ला कम करना है। एकर अलावा अगर आप मन ला जला था तो माटी में कठोरता आते, माटी में रहने वाला जो मित्र कीट है ओकर संख्या कम हो जाते काबर की ओमन एमें जल के मर जाते। ओकर अलावा आप मन आसपास के भी कई बार ये होते कि आसपास के जो पेड़ पौधा है ओहर सब भी जल जाते। तो आप मन ला पराली प्रबंधन करना चाहिए। ओला आप मन उपयोग कर सका था बस आप मन ला थोड़कुन जानकारी होना जरूरी है। अगर आप मन चाह तो पराली और कचरा ले मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला खाद प्रयास किए जा सकते और जिला बना के आप मन अपन खेत डोली में उपयोग भी कर सका था। खेत में इंटू सी टू कंपोस्टिंग बनाए जा सकते। फसल की कटाई होगी इस अवशेष बची से या फिर पराली ला जो जलाए के बाद या फिर आपन नहीं जलाता तो हर बहुत बढ़िया है कि आपन वेस्ट डिकम्पोजर के जो डिब्बा होते हैं ओकर ला छिड़काव कर देगा और लगभग 30 से 40 दिन में बेहतर जैविक खाद जिला ह्यूमस कथन ओहर ओमें बदल जाते और जे हर आने वाला फसल वाल बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाते। तो आप मन ला खाद के जो खर्चा है ओहर बढ़ जाते। अगर आप मन गोबर खाद उपयोग करा था तो ओमें आप मन ला गोबर खाद केचुआ खाद ये भी कम जरूरत पड़ते और एकर उपयोग भी आपन जैविक खेती में कर सका था। महंगा कीटनाशक फफूंदनाशक के विकल्प अगर हमन बोलबो तो बायोपेस्टिसाइड जो है ओकर अलावा आप मन जैविक कीटनाशक के उपयोग करा तो महंगा कीटनाशक आप मन ला उपयोग करेला नहीं पड़े। वेस्ट डिकम्पोजर के जो घोल आपन तैयार करता ओला पानी में मिला के आपन छिड़काव कर सका था ओकर लिए बहुत कन बैक्टीरियल फंगल और वायरल बीमारी नहीं हुई और इन्फेक्शन भी नहीं हुए। फसल के सुरक्षा कम हो जाते और फसल सुरक्षा के जो लागत है वह बहुत ज़्यादा आप मन ला नहीं पड़े। ओकर अलावा जो महंगी दवाई के खर्चा है वह बच जाते। आप मन वेस्ट डिकम्पोजर ला उपयोग कर सका था और बढ़िया तरीका ले आप मन एला उगा सका था और अपन के जो फसल के वृद्धि भी है वेस्ट डिकम्पोजर के वजह ले बढ़िया हो जाए। माटी में जो गुणवत्ता के सुधार है वह भी बहुत ज़्यादा हो जाते और पानी के जो बचत अगर हम मन कहो तो पानी के बचत भी होते। अगर आप मन वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग करा था तो ओकर कंटिन्यू उपयोग करेले कठोर हो जमीन हर मुलायम हो जाते। जुताई करेले डीजल के खर्चा कम हो जाते और जल धारण क्षमता जो है ओहर बढ़ जाते। तो आप मन जैविक कार्बन के प्रतिशत ला बढ़त हुए देख सका था। माटी पानी ज़्यादा सोखते फिर नमी बने रहते फिर ओकर बाद बार बार खर्चा करे के जरूरत नहीं पड़े। वेस्ट डिकम्पोजर ला अपन एक बार अगर खरीद ले हा तो बहुत दिन तक ओकर उपयोग कर सकते। ओकर अलावा एक मदर कल्चर ला अपन 200 लीटर घोल में भी तैयार कर सका था और इमें गुड़ वगैरह मिला के इला आउ आगे बढ़ा सका था। और वेस्ट डिकम्पोजर बार आप मन ला 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी और प्लास्टिक ड्रम में मिलाना है। एक वेस्ट डिकम्पोजर ला लेना है ओला गुड़ के घोल वाले ड्रम में डाल देना है। ड्रम में सही ढंग ले वेस्ट डिकम्पोजर ला लकड़ी के सहायता ले डंडे ले हिला के ओला पूरा मिक्स करना है। ड्रम ला पेपर या बोर्ड ले ढक देना है और रोज दिन ओला एक एक बार घुमाना है। 7 दिन के बाद देखिए तो ड्रम के घोल क्रीमी हो जाही तो ओकर बाद आपके वेस्ट डिकम्पोजर जो है और तैयार हो जाही। तो आप मन 200 लीटर पानी ले जो तैयार आप मन के वेस्ट डिकम्पोजर है ओला थोड़ा थोड़ा लेके उपयोग कर सका था। तो एक ले आप मन अपन खेती के लागत ला घटा सका था। तो ये तो बात रही इस वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। बातचीत तो चलत रही अब चला सुनबो एक ठीक लोकगीत।

अभी अमन सुनत रहिन, जेमा स्वर दे रहिन द्वारिका यादा सरस्वती निषाद, यह रहिस ददरिया गी। ता संगवारी हो, देखा था अगर आपन कुपोषण के शिकार नहीं होना चाहता, आपन चाहता कुपोषण ले मुक्ति हो जाए, ता तेकर ले बचे बर आपन पोषण वाटिका लगा सका था, और पोषण वाटिका ले आपन थोड़कून अपना पैसा ला भी बचा सका था, और बहुत बढ़िया तरीका ले घरेच में सब्जी भाजी उगा सका था। अगर आप मन के घर में छोटकुन बाड़ी हावे, किचन गार्डन है, या फिर थोड़कुन बगीचा है, तो ओकर आप मन उपयोग कर सका था। और हमर सरकार भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कोती ले मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूल के पिछवाड़े में बैकयार्ड जो रहते ओमे कहीं से, और वैसे भी कि स्कूल वगैरह में बढ़ावा दे जाते कि आपन पोषण वाटिका लगावा। वहाँ के जो दीदी नोनी मने और जो वहाँ के पढ़ाने वाला शिक्षक शिक्षिका है और लयिका मन सब उन्हें के जो पोषण वाटिका के सब्जी है ओला खाते। और एकर उद्देश्य ये रहते कि हर परिवार ला ताजा रासायनिक खाद ले मुक्त पौष्टिक सब्जी और फल आसानी ले उपलब्ध हो सके। संगवारी हो, पोषण वाटिका के कतको कन लाभ है, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व के पूर्ति हो जाते, ये शरीर में विटामिन और आयरन के कमी ला दूर कर देते, जेकर ले एनीमिया नहीं होए। और अगर आप मन के आयरन के अगर आप मन के शरीर में कमी होते तो आप मन एकर बार भाजी वाजी खा सका था। एकर अलावा आप मन ला पोषण वाटिका ले मिलने वाला जो फल फूल साग सब्जी हो और ताजा रही शुद्ध रही, जेला आप मन तुरंत तोड़ के खा सका था बना सका था, वह हर कीटनाशक ले पूरा मुक्त रही। एकर ले आपमन ये है कि आपमन ओकर देखभाल कर सका था, आपमन के माटी के जो हावे ओकर बढ़िया ले उपयोग हो जाही, पैसा के भी बचत हो जाही। अभी के समय में जो महंगी सब्जी मिलाते फल मिलाते ओकर होने वाला जो खर्चा है वह थोड़कुन कम हो सकते। एकर अलावा एकर ले महिला मन आत्मनिर्भर बन सकते, बच्चा मन के पोषण के मामला में ओमन थोड़कू आगू बढ़ सके थे, लइका मन ला बढ़िया खाना घर में उपलब्ध करा सकते, और ओमन पैसा ला बचा सकते, काबर की वो पैसा ला बचा के ओमन अपन दूसर काम में ओला उपयोग कर सकते, और घर में थोड़कून मेहनत करके पोषण वाटिका ला तैयार कर सकते। पोषण वाटिका में अपन का का लगा सकता, हरे पत्तेदार सब्जी होगी जैसे कि मेथी बथुआ चौलाई होगी, जो कि आयरन फॉलिक एसिड ले भरपूर होते, जकर ले खून के कमी दूर हो जाते। आपन इमें सहजन जेला हमन मुनगा कथन, सागौन, पपीता, फिर आंवला, नींबू, कटहल, पपीता, केला, ये सब ला आपन लगा सकता है। एकर ले विटामिन सी, कैल्शियम, इस पोटेशियम के कमी दूर हो जाते, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हर बढ़िया ले पूरा कम बढ़ जाते, और वो कर ले ये होते कि आप मतलब बार बार तबीयत खराब होए के समस्या नहीं हुई। अन्य सब्जी में आपन गाजर, टमाटर, कद्दू, लौकी, मखना लगा सका था, आपन करेला लगा सका था, भिंडी लगा सका था, और एकर ले का हो ही विटामिन ए और दूसर कैल्शियम मिनरल्स भी आप मन ला मिल सकी। औषधीय पौधा में आपन गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, भुई लीम और ऐसे कई औषधीय पौधा ला लगा सका था, जेकर ले आप मन ला मौसम संबंधी बीमारी ले बचाव हो जाए। आपमन कई ऐसे तनेदार या फिर कद्दू वर्गीय फसल ला भी अपन घरेच में पोषण वाटिका में लगा सका था, जैसे कि आपमन के कद्दू होगी, करेला होगी, एकर ले का है भाजी भी आपमन ला मिल जाए, ओकर फूल भी मिल जाए, ओकर फल भी मिल जाए, जेला आपमन समय समय में खा सका था, और जेला खा के आपमन ला पोषक तत्व के वृद्धि हो जाए। आपमन औषधीय पौधा ला उपयोग करके घर में सुखा के ओकर काढ़ा बना के भी पी सका था, तो आपमन ला बहुत ज्यादा दवाई के भी जरूरत नहीं पड़े। आप मन लेकर बर करना के है एक स्थान चुनना है, जैसे घर के पीछे आंगन होगी, वो में जहाँ कम से कम थोड़कुन देर 4-5 घंटा धूप आ

0: तो अभी अमन लोकगीत सुनत रहिन का जादू मंत्र डाले जेमा स्वर दे रहिन चतुर्राम साहू कांति यादव गीता भट्ट। तो ये गीत तो बहुत बढ़िया रहीस और एकरे संगे संग हमर रामविलास भैया गे रहिन भेंट वार्ता करे बर ग्राम चार भाटा के कृषक रामलाल पटेल ले जेहर ओला बताई कि फसल विविधीकरण करण ले मृदा की सेहत और उर्वरता में वृद्धि कैसे हो सकत है। तो ओकर जो भेंट वार्ता रहीस चला ओला सुनबो।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। भेंट वार्ता के विशेष अंश में आज हमर बीच में ऐसे किसान उपस्थित हैं जोन मन से जानबो कि पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं और खेती किसानी के कामला करत हैं। तो सबले पहले तो किसान भाई ला राम राम, जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: आप मन के परिचय बता।
2: मैं रामलाल पटेल, पोस्ट चार भाटा ग्राम का हूँ। मैं बरम किला ब्लॉक के अंदर आता हूँ और सारंगढ़ में हमारा जिला है।
1: अच्छा,
2: खेती बाड़ी हम लोग करते हैं।
1: तो रामलाल पटेल जी, हमन आप मन से जानना चाहबो कि उम्र कत का होगे।
2: हमें तो उम्र 52 साल हो गए।
1: और पढ़ाई लिखाई कत का हुए?
2: पढ़ाई लिखाई तो फर्स्ट फाइनल कर दार रहे।
1: अच्छा, वो जमाना में बहुत पढ़ाई रही से कहा तो। और समय के हिसाब से खेती किसानी के रद्दा में आना पड़े से, तो खेती किसानी में आप मन कब से जुड़े?
2: मैं लगभग 10 साल पहले पापा के काम में हाथ बता रहे हैं। और बाद आप पापा गुजर गए तो मैं खुद काम करता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो पटेल जी ये बता कि खेती किसानी में कैसे लागत थे, का लागत थे, एमा इनकम दिखा थे, भविष्य में अच्छा हावी, किसान मन उन्नति कर सका थे, कैसे लागत है आप मन ला?
2: हाँ, किसान अगर करना चाहे तो बहुत उन्नत कर सकत है। अपन किस्म किस्म के फसल लगा सकत है और मुनाफा ले सकत है।
1: अच्छा, तो अभी आप मन का फसल ले है?
2: अभी तो फिलहाल धान के रोपाई करत हन।
1: अच्छा, और का ले था?
2: ओकर पहले में धनिया लगाए रहन, तो धनिया ला उखाड़े हन, ओकर बाद में अभी थरहा लगा दे हन पहले से। अब बोला रोपाई कर देबो तो डबल फसल हो जाते है हमारे पर।
1: अच्छा, अगर चाहबो तो धान काटे के बाद मूंग उड़द लेबो तो तीन फसल भी हो।
2: अच्छा, गर्मी में लगा था जो फिर एक फसल लगा देता।
1: अच्छा अच्छा, यानी फसल विविधीकरण के रूप में भी हो जाते का। तो ये हम आपन से जानना चाहबो कि ये जो काम है धनिया लगा रहा, तो धनिया ला कब से लगा रहा?
2: एला हम लगभग 2 माह पहले लगा रहे, तो 1.5 महीना में होगी से। ओकर बाद में ओला उखाड़े के बाद में अब जोताई फंदाई करे हन तो और टाइम लगी से 15 दिन, लगभग 2 महीना में एकर फसल पूरा तैयारी होगी से।
1: अच्छा, ये देखा जाए तो सीमित समय के फसल हावे धनिया के खेती का। तो
2: हाँ,
1: तो कतका एरिया में धनिया लगा रहे आपमन?
2: मैं 1 एकड़ में लगा रहे हैं और 1 एकड़ अभी रोपाई करना है, थरहा लगा दे हूँ।

0: अच्छा, तो ये जो 1 एकड़ में लगा रहे हैं, तो मैं जैसे बात करते हैं तो का चीज के विशेष ध्यान रखे बोला, अगर इसे वर्षा पूर्व लगा रहे हैं आप मन, तो जैसे मानसून सक्रिय उससे बेरा लगा रहा।
1: हाँ, पानी गिरे के पहले लगा रहे, 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले लगा दे, ओकर बाद में हमला और कुछ करे नहीं लगी से, वो में सब बीजा वीजा डाल के रख रहा, खातु सब दे दे रहे, तो पानी वानी छिंचाई उचाई कुछ करे नहीं लगी। हाँ, वर्षा में हो गई।
0: और घास वास में होते कि नहीं हुए?
1: नहीं, ओकर बाद दवाई ठुमार रहे जो ना थे, तो दवाई वाला मार दिले, घास वास
0: नहीं हो गए, सिर्फ धनिया छरूक थे।
1: धनिया छरूक थे।
0: अच्छा, तो इसमें उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए, लाभ के दृष्टिकोण से, तो 2 महीना में कैसे इनकम हुई से, वहाँ से कत का इनकम होगी से?
1: और 40-50 हजार मिनिमम में बन जाते
0: एकड़ पाछू।
1: हाँ, नीच हो की स्थिति में।
0: अच्छा अच्छा,
1: और नहीं तो रेट अच्छा मिले ले तो 1.5-1 लाख ले ऊपर होना है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये दारी भाव कैसे रही से, मंदी रही से, तेजी रही से?
1: तेज भी रही, लेकिन तेज नहीं भेट पाए हम, मंदिर भेटे तो पर भी उतकी हो गए।
0: अच्छा अच्छा, तो धनिया की खेती के बाद आप मन अभी धान के रोपाई करत भी है और करने वाला भी है, जो भी है, अब ये महीना में पूरा हो जाए का? तो
1: हाँ, 15-2-4 दिन के अंदर में वाला रोपाई कर देबो।
0: हाँ,
1: हरहर लग गए है।
0: अच्छा अच्छा,
1: जोताई वोताई होगी ना?
0: हाँ हाँ,
1: तो अब 4 दिन के अंदर में वाला जगह भी हो जाएगी।
0: तो धान के जैसे बात करते हैं, तो का किस्म के धान लेता आप मन?
1: सरना लेथन।
0: अच्छा, जैसे धनिया ला उखाड़ लेवा, ओकर बाद वाला चिखला मता लेता। चिखला मता के बाद उनमें आधार खाद कुछ डीएपी सुपर को कहते हैं कई प्रकार के।
1: हाँ, डीएपी देथन 1 बोरा।
0: अच्छा,
1: 1 एकड़ के हिसाब से।
0: अच्छा, ओकर बाद फिर वहाँ रोपाई करता।
1: रोपाई कर,
0: तो रोपाई के बाद में का चीज ध्यान रखना पड़ते, के पैंत खाद देना पड़ते?
1: रोपाई के बाद और अभी देवो, ओकर बाद में 2 खेप और देवो।
0: अच्छा, 3 पैंत देना पड़ता।
1: हाँ, 3 पैंत देना पड़ी।
0: और घास वास के नियंत्रण
1: पर घास नहीं उगे के दवाई मार देता।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आप मन मारता उकर बाद उभर नहीं उगे कहा तो?
1: नहीं उगे।
0: अच्छा, तो इमें जैसे पटेल जी, जैसे देखा जाए तो एक अवस्था थे में साढ़ा पाना थे कहते हैं, और कई प्रकार के रोग बीमारी भी लगते, तो ये मन ला कैसे जानता, कैसे पहचान था, नियंत्रण कैसे करता?
1: वो साढ़ा पान के लगे के पहले दवाई छिड़काव कर देते, तो साढ़ा पान नहीं लग पाए हमारे में।
0: अच्छा, ज्यादातर ये शीतकालीन में हो, शीत गिरते तो
1: शीत गिरे के पहले छिड़काव कर देते तो साढ़ा पान नहीं हो पाए।
0: तो नियंत्रण पर भी तो उपाय करते हैं कि यूरिया ला कम छिड़काव करना है और पोटास ला डालना चाहिए, ऐसे कहते हैं भी?
1: हाँ, तो देथन जो पोटास यूरिया ला कम करके डीएपी और पोटास के ज्यादा
0: मात्रा देता। हाँ, विशेषज्ञ मन तो वही कहते हैं कि जतका यूरिया डाले अतका कोमल पत्ता ही कीड़ा भी लगी और संग में जो साढ़ा पान भी होते कहते हैं।
1: हाँ, तो यूरिया कम डालते हैं हमन।
0: अच्छा,
1: पोटास और डीएपी ला ज्यादा हमें डाले की कोशिश करते।
0: अच्छा अच्छा, तो धान की खेती में और रोग बीमारी का क्या थे मेन?
1: मेन में अभी ये कंसार होकर मरे मरे पुतमरी।
0: अच्छा अच्छा,
1: और आत है ओकर नियंत्रण करबो तो शीत ब्लास्ट आई। शीत ब्लास्ट के बाद में धान होए के टाइम में कोबड़ी वाल हो ही।
0: हाँ,
1: ये वाला बीमारी मनाते हैं।
0: और अंतिम में भूरा माहू।
1: भूरा माहू,
0: तो ये सब के नियंत्रण पर विशेष का चीज के ध्यान रखना पड़ते, का करना चाहिए किसान ला?
1: जमीन ला ओकर फसल के हिसाब से रखना पड़ते, कब सूखा रखना है, कब गीला रखना है, वो मौसम के हिसाब से रखे वो लगते।
0: अच्छा अच्छा, और ये काम में देखा जाए खेती किसानी के काम में तो संतुलित खाद के प्रबंधन भी जरूरी रही थे।
1: हाँ,
0: और संतुलित खाद के अलावा अगर किसान भाई फसल चक्र अपनाते, जैसे आप मन एक खेत में कहा था कि धनिया लगा रहा, फिर धान लगा दा, फिर मूंग उड़द लगा, तो एक प्रकार से डाइवर्स, एक प्रकार से और का है चक्रण हो थे।
1: हाँ, फसल चक्र हो जाए आधो में
0: है ना,
1: और वो में धान के अलावा अन्य फसल लगा थे, तो उसमें हमें उर्वरक जैसे मूंग लगा था तो गांठ गांठ में उर्वरक रथे कथे।
0: हाँ, राइजोबियम जीवाणु कल्चर रहे थे
1: तो, और फिर वो धान पर काम आ जाते हम, तो खाद कम लगते खातिर।
0: हाँ, तो सही बात है, और समय के हिसाब से ही सरकार भी कहते कि फसल चक्रण ला अपनाओ और गोबर खातु है या जैविक खातु है तेमल ला उपयोग करा, अगर ये हर भी नहीं होते तो अपन कंपोस्ट खाद घर के कचरा कुटा भी खाद बना के डाला, ऐसे भी कहते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये कहते हैं कि माटी के जांच कराई है तब पता चलिए आप मन के भूया के सेहत हरकत है।
1: हाँ,
0: है ना,
1: वो करना चाहिए, खाद वाद भी डालथन।
0: हाँ हाँ,
1: और मिट्टी के परीक्षण भी बीच में कराथन।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो जो ऊपर हिसाब से चूना डालना पड़ते या कुछ भी डालना पड़ते तो डाल के मिट्टी भी बनाए।
0: अच्छा, अच्छा, तो रामलाल पटेल जी हमारे संग सुगर गोठिया हुआ बातचीत करा, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।
1: जय जोहार।
2: तो अभी अमन सुनत रहें भेंट वार्ता, और संगी हो आज हावे मदर टेरेसा के जयंती। हर बछर 26 अगस्त के हमन मदर टेरेसा के जन्म दिवस मनाथन, और पुण्यतिथि 5 सितंबर के

जाते। 26 अगस्त 1910 में एकर जन्म होय रहीस और ओकर सेवा भाव ला हमन हर बछर हर समय याद करथन। और 5 सितंबर 1997 में एकर निधन होय रहीस। कैथोलिक चर्च एला सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता के पर्व के नाम ले मनाते। अगर हमन वास्तविक नाम के बात करबो तो एंग्नेस गोंजा बीयू जीजू एकर नाम रहीन। और एकर मुख्य कार्यकाल जो रही सो हर कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के स्थापना करना रहीस। एला बहुत कन सम्मान भी मिली से। एकर जो जन्म है और 26 अगस्त 1910 के स्कॉब्जे जो कि अभी उत्तर मैसी डोनिया में है वहाँ यह पैदा हुए रहीन। और सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में ये नन बने के फैसला लिहीन और सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल हो गए रहीन। और 1929 में कोलकाता आईन। यही समय एकर भारत आगमन हुईन। और वही समय में भूगोल के एक टीचर भी बनीन। और फिर ओमन आंतरिक पुरकार ओमन ला मिलिस 1946 में एक ट्रेन यात्रा करे के दौरान। मदर टेरेसा सोचिन कि अब गरीबों के सेवा करना चाहिए तो ये आंतरिक पुकार ला ये महसूस करीन। फिर ओकर बार 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्माण करें। और एक शुरुआत तो एक छोटे से संस्था में हो रही जो कि आज 130 देश में ज्यादा संस्था एमन के चलत है जिनमें काम होते और मन से पढ़ाते और मन से के जीवन भी चलते। अगर हमन एक सेवा भाव के काम के बात करबो तो निर्मल हृदय एवं बेसहारा और मरना सन लोग मन बर निर्मल हृदय जो कि कालीघाट कोलकाता में है वो आश्रम के निर्माण करीन। फिर शिशु भवन अनाथ और बेघर लयिका मन ला सुरक्षित रखे के आश्रय बनाइन। फिर कुष्ठ रोगी जेला लेप्रोसी भी कहा जाते ओ समाज मन ले बहिष्कृत किए गए कुष्ठ रोगी मन के इलाज पर गांधी जी शांति नगर के स्थापना करीन। ये बंदा 3 महान सम्मान और पुरस्कार मिले जेमा पद्मश्री है जो भारत सरकार और मनला 1962 में दीस। फिर नोबल के शांति पुरस्कार जो कि 1969 में वैश्विक शांति के सेवा बर एला मिलिन। और भारत रत्न 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान मदर टेरेसा ला मिलेस। और अंतिम समय के बात करबो तो 5 सितंबर 1997 में 87 वर्ष के आयु में एकर कोलकाता में निधन हो गए। तो ये तो बात रही मदर टेरेसा के बारे में। चला एक टिक और लोकगीत सुनबू।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: संगी ओविया मन सुनत रहिन संदेश, और संदेश ले पहले सुनत रहिन लोकगीत जेमा स्वर देहे रहिन गंगादास मानिकपुरी और ओमन के साथी। संगी ओवी जाए के बेरा होगी से ता हमन जात जात ये कहबो कि हम अगर चाहतन कि अपन जाए के बाद भी हमार नेत्र हमार कार्निया के कोनो बढ़िया तरीका से उपयोग हो तो हमन एकर बर नेत्रदान कर सकतन। नेत्रदान करे बर आप मन

राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1919 ने फोन करके संपर्क कर सका था। यहाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहते और आप मन अपन मृत्यु के बाद आप मन के जो कार्य है ओकर दान कर सका था। तो संगी हो जाए के बेरा होगी से तो सबो संगी संगवारी मन ला स्वप्न लामदेव के राम राम जय जोहार।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में ये गीत। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने फिल्म लावा का गीत। आवाज है आशा भोसले की, गीतकार आनंद बख्शी और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और अमित कुमार का गाया फिल्म जीवा का ये गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थी

0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एनयूएनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे।

मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कुमार सानू की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। गीत गौहर कानपुरी का है, संगीत नदीम श्रवण का।

आइए अब सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना। आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और साथियों की आवाजों में। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में है। फिल्म का नाम है तवायफ। गीत हसन कमाल ने लिखा है, संगीत से सवारा है रवि ने।

ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो

0: ही चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफ़ी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड वाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना, रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कहीं फिल्म वालों को भी कैसे दिया करता था मैं। तो वहाँ से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसे देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला, वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नरानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी की स्टेटस वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज़ किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफ़ी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट के राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि

0: मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमज़ोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरे कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते थे कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने पे डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से हो, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट करते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी।
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, और मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉरपोरेट बनाई 2006 में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अनुप्रसारण अभी आप सुन रहे थे। यह अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत है फिल्म मेरा साया से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुर्माना में लता मंगेशकर की आवाज, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का ये गीत। आइए अब सुने मुकेश का गाया गीत फिल्म अनाड़ी से। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने, फिल्म है दिल तेरा दीवाना, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है उषा खन्ना का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम गुलदस्ता। सबसे पहले सुनिए गुलाम अली को, रचना है आदिम हाशमी की।

0: अभी आप सुन रहे थे कतिल शिफाई की लिखी गजल, आवाज थी पंकज उदास की। आइए अब सुने आशा भोसले और जगजीत सिंह को, शायर हैं निदा फाजली।
1: देख के बोले ये समझने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: कतिल सिपाही की लिखी गजल अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी पंकज उदास की। इसके साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी

0: आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नोवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनियाभर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरेकल। A massive flash flood swept through